उन्होंने कहा कि कुछ नुकसान की बात नहीं, हम अपने परवरदिगार जाने वाले, उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार हमारे गुनाह बख्श देगा, इसलिए कि हम अव्वल ईमान लाने वालों में हो गए।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंधु जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंधु जो आवाज बुधंदा रहो।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: कोक स्टूडियो सीजन 9।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: है मठ और मटियारी की आवाज
1: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
3: टाइम में मॉर्टेंस गोल करे टीम के कामयाबी डेराए छी। अर्जेंटीना जा बई गोल कप्तान मेसी जे पास साइन थे। इंग्लैंड जो 60 सालन बाद फाइनल खेलने वालो ख्वाब चिकना चूर थी वयो। न्यूयॉर्क में आचर दिहाड़े अर्जेंटीना ए स्पेन महादंगल में आमू सामू थींदा। सेमीफाइनल में कामयाबी ते अर्जेंटीना में जशन शहरन जो खुशी वीचार रख। अमरीकी फौज की ईरान ते शदीद बमबारी तहरान के बहरी नाकाबंदी भी बरकरार। ईरानी शहर बामपुर में अमरीकी हमले में 7 ईरानी फौजी शहीद थी वया। ईरानी सेहत वारी वजारत मूजिब अमरीकी हमलन में इन वक्त ताईं 30 शहरी शहीद थे। अमरीकी सेंटकॉम चाह है ईरानी सरकारी मीडिया की कणक जखीरे से हमले वारी दावा बेबुनियाद है। 14 जुलाई से रुगो ईरानी फौजी हदफन के निशानो बनाया वो। बंदर अब्बास आहवाज बोशहर कशम तम फोरमोज ए कोहिस्टाक में कार्रवाई कई वो। कार्रवाई जो मकसद हरमज लंघ में हमलन की ईरानी सलाहियत के कमजोर करण हो। ईरान सामुंडी लंघ हरमज में गुजरंदर जहाजन ए नार मुल्क के निशानो बनाए रो है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है तो खेस डेडलाइन डेण पसंद ना है। ईरान के पांजो रवैयो ठीक कर घुर्जे। डोनाल्ड ट्रंप गुजरे डी धमकी डींदे हो तो ईरान मुआदो न कर तंदड़ हफ्ते बिजली घरन ए पुलन के तबाह किया वो। ईरान में अजा कुछ जंग विड़न की सलाहित है पर उ हाँ घनी ना रही। अमरीकी फौज ईरान के तवानाई हदफन के आखिर में निशानो बनाई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ है तो ईरान कदें भी जंग की आजियां ना कई ए नई वरी करे तो पर मुल्क की कौमी सलामती ए मफादन के तहफुज लाए हर वक्त तैयार रहंदो है। दुश्मन की हिकमत अमली तब्दील ना थी। ईरानी फौज के जारियत जो मुकाबलो करण की आजादी हासिल है। ईरानी परदेही वजार के तर्जमान इस्माइल बकाई जो चवण हो तो ईरान जो फिलहाल गालन जो को भी इरादो ना। अमरीका पांजा वायदा न पाड़े मफामती यादाश्त नामे तहत जिम्मेवार खत्म क्यूं। बी धुर जिम्मेवार खत्म क्यूं तो ईरान के भी पैं जिम्मेवार पासो करणो पड़ो।

0: बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाक फौज के रेड लाइन करार ॾेई छॾियो। कश्मीर मसले के हल लाइ ट्रुथ एंड रिकंसल्टेशन कमीशन जोड़ण की भी तजवीज़ पेश। आज़ाद कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद में पार्टी अगवान के खिताब कंदे बिलावल भुट्टो चयो तो पाक फौज असांजी रेड लाइन आहे, उन खिलाफ का भी ॻाल्हि बर्दाश्त न कंदासीं। आलमी साज़िशन के समझणो पवंदो, लफ्ज़न की दुरुस्त चूंड करणी पवंदी। कश्मीर में दहशतगर्दी वाली सियासत की हिमायत न कंदासीं। मौजूदा हालतुनि जो मुकाबलो ताकत सां नथो करे सघिजे, ज़िम्मेवारी जो मुज़ाहिरो करणो पवंदो। मौजूदा बुहरान हिकु वफ़ाक़ी वज़ीर जे करे थियो आहे, वफ़ाक़ी हुकूमत मसलो हल करे। कश्मीर जो मसलो कश्मीर में ई हल करणो पवंदो। मोदी सिंध तास मुआदे ते हमिलो करे रहियो आहे, असां सभु जवाब ॾियण लाइ तयार आहियूं। सिंधूअ जे पाणीअ ते को बि ठाह न कंदासीं। बलोचिस्तान में खारिजन खिलाफ़ जारी ऑपरेशन शाबान में वधीक टे दहशतगर्द मारिजी विया। बलोचिस्तान में पाक फौज पुलिस ऐं एफसीए जो गडि॒यल ऑपरेशन शाबान जारी। सिक्योरिटी ज़रियनि मूजिब फोर्सिस जे कार्यवाहिनि में वधीक टे दहशतगर्द मारिजी विया। ऑपरेशन शाबान में मारिजी वियल दहशतगर्दनि जो अंग 88 थी वियो। सिक्योरिटी फोर्सिस दहशतगर्दनि जे थाकनि खे कामयाबी सां निशानो बणायो। 5 जुलाई खां बलोचिस्तान में जारी ऑपरेशन में 126 दहशतगर्द मारिजी चुका आहिनि। सियासत जे मैदान में सियासत कयो, असांजे ॿारनि जी तोहीन न कयो। इदारनि ते सियासत करण जो कंहिंखे बि हक़ नाहे। मौलाना ताहिर अशरफी जी पैगाम, अमुन कमेटीअ जे वफ़द सूधो वॾे वज़ीर मुराद अली शाह सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध जूं रवायतूं ऐं मज़हबी हम आहंगी पाकिस्तान लाइ मिसाल करार। मौलाना ताहिर अशरफी चयो त फोर्सिस जा जवान पघारुनि लाइ न पर सरहदनि ते असांजी हिफ़ाज़त लाइ क़ुर्बानीूं ॾेई रहिया आहिनि। सिंध में सदाई मोहबत ऐं अखूअत जो पैगाम ॾिनो वेंदो आहे। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह चयो त अमुन बर्दाश्त ऐं कानून जी बालादस्ती ज़रिए ई इस्तेहकाम आणे सघिजे थो। शर्जील मेमन चयो त वतन लाइ क़ुर्बानीूं ॾींदड़नि ते फ़ख्रु आहे। पंजाब असेंबली जे स्पीकर मलिक अहमद खान जो मौलाना फज़लुर रहमान खां शहीदनि बाबति बयान ते माफ़ी वठण जो मुतालबो। मलिक अहमद खान चयो त दहशतगर्दनि जो को बि मज़हब नाहे हूंदो, क़ौम दहशतगर्दनि जी ख़ात्मे ते मुतफ़िक़ आहे। मौलाना फज़लुर रहमान जो शहीदनि बाबति बयान अफ़सोसनाक आहे। मौलाना फज़लुर रहमान दुरुस्त नाहे, माफ़ी वठे। लाइव स्टॉक शोबे जी तरक़ीअ लाइ अमली क़दम अंटर आहिनि। जदीद टेक्नोलॉजी अख़्तियार करणी पवंदी, हाणे ॻाल्हियुनि जो वक़्त नाहे। अमली क़दम वधाइण घुर्जनि, वफ़ाक़ ऐं सूबनि खे गॾिजी डिघो सफ़र तय करणो आहे। वज़ीर आज़म जो इस्लामाबाद में लाइव स्टॉक जे हवाले सां क़ौमी सेमिनार खे ख़िताब। वज़ीर आज़म चयो त अल्लाह ताला पाकिस्तान खे अणॻणियल क़ुदरती वसीलनि सां नवाज़ियो आहे। हारी ॾींहं राति महिनत करे मुल्की तरक़ीअ में अहम किरदार अदा करे रहिया आहिनि। जदीद टेक्नोलॉजी न हुजण सबबि पाकिस्तान लाइव स्टॉक जे शोबे में खिते जे ॿियनि मुल्कनि खां पोइते आहे। ज़रात ऐं लाइव स्टॉक जे शोबे में महिनत सां कम कयो वञे त 1 साल अंदर मैशियत बहितर करे सघिजे थी। बलोचिस्तान मां अगवा थियल अॻूणो एक्साइज डायरेक्टर सईद मेमण बाज़ियाब। सईद मेमण 59 ॾींहनि खां पोइ बाज़ियाब थी कराची वारे घर पहुतो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
3: यार कुछ डीन खा चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द एतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
4: तो पोइ तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो नथो करी?
3: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
4: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थियल हंध ते आसानी सां जज़्ब थी सूर ऐं सोडियम मां आराम पहुचाइण में मदद ॾिए थी।
3: सिर्फ़ चेल ऐं सूर लाइ
4: न दा, असाबनि जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध ऐं चेल जी तकलीफ़, सट, धक लॻण, पुराणनि ज़ख़्मनि जे सूर ऐं चमड़ीअ जे जलन लाइ बि फ़ाइदेमंद आहे।
3: इस्तेमाल कीअं कजे?
4: मुतासिर थियल हंध ते ॾींहं में 2 खां 3 भेरा नरमी सां लॻायो ऐं आराम जो अहसास हासिल करियो। जी हा, फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खां आराम, हर रोज हर कदम। अॼु वेझे स्टोर तां नालो वठी ख़रीद करियो फ़क़ीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: हक सच जो आवाज़, गीत संगीत जो आवाज़, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज़, ॿुधंदा रहो।
6: تعلیم القرآن، قرآن مجید کے لفظی ترجمہ اور تفسیر پر مبنی پروگرام مقررہ ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی۔
7: نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ ادب اللہ، اللہ کے دشمنوں کو، و ادبکم اور اپنے دشمنوں کو، و آخرین من دونہم دوسروں کو جو ان کے علاوہ ہیں، یعنی جو ابھی تم دشمن کی شکل

0: ये प्रोग्राम अलहुदा इंटरनेशनल की तरफ से पेश किया गया। प्रोग्राम के हवाले से खत लिखने के लिए पता नोट कीजिए, अलहुदा इंटरनेशनल 41 DMMS, नियर चिल्ड्रन पार्क, सिराजुद्दौला रोड, कराची। फोन नंबर 02134547710, 03005187599।
1: It's 9:30 AM. This time check is brought to you by
2: Minus ho sari tensions jab ho aapke paas Zong 4G ki plus offer. Let's get digital with Zong 4G.
3: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेसिक क्रीम,
3: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
4: ये मुआसर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
3: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
4: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
3: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
4: गर्दन और कंधों के दर्द
3: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब,
4: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
5: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यू, हांजी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
6: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
7: yeah!

0: आप सुन रहे हैं TFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
0: GFM 91.6।
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GFM Network par KTN News.
5: Vyo Bandar Abbas mein bhi fauji thikanan ke nishano banaye tabah kayo. Karwain jo maqsad Hargamz Lang mein hamlan di Irani salahiyat ke kamzor karan ho. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे ते खेस डेडलाइन डेण पसंद नाहे, ईरान के पंहिंजो रवैयो ठीक करण घुर्जे। डोनाल्ड ट्रंप गुज़िरियल ॾींहुं धमकी ॾींदे चयो हो त ईरान मुआहिदो न कयो त ईंदड़ हफ़्ते बिजली घरनि ऐं पुलनि खे तबाह कयो वेंदो। ईरान में अञा कुझु जंग विढ़ण जी सलाहियत आहे पर इहा घणी नाहे। अमेरिकी फ़ौज ईरान जी तवानाई हदफ़नि खे आख़िर में निशानो बणाईंदी। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर बाकिर कालिबाफ चयो आहे त ईरान कॾहिं बि जंग जी आजियां नाहे कई ऐं न वरी करे थो, पर मुल्क जी क़ौमी सलामती ऐं मुफ़ादनि जे तहफ़ुज़ लाइ हर वक़्तु तयार रहंदो आहे। दुश्मन जी हिकमत अमली तब्दील नाहे थी। ईरानी फ़ौज खे जाहिरियत जो मुक़ाबलो करण जी आज़ादी हासिल आहे। ईरानी परॾेह वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई जो चवणु आहे त ईरान जो फ़िलहाल ॻाल्हियुनि जो को बि इरादो नाहे। अमेरिका पंहिंजा वाइदा न पाड़िया त मुफ़ाहिमती यादाश्त तहत ज़िमेवारियूं ख़तम कयूं, ॿी धुर ज़िमेवारियूं ख़तम कयूं त ईरान खे बि पंहिंजे ज़िमेवारियुनि खां पासो करणो पवंदो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पाक फ़ौज खे रेड लाइन करार ॾेई छॾियो। कश्मीर मसले जे हल लाइ ट्रुथ एंड रीकंसिलेशन कमीशन जोड़ण जी बि तजवीज़ पेश। आज़ाद कश्मीर जे शहर मुज़फ़राबाद में पार्टी अॻवाननि खे ख़िताब कंदे बिलावल भुट्टो ज़रदारी चयो त पाक फ़ौज असांजी रेड लाइन आहे, उन ख़िलाफ़ का बि ॻाल्हि बर्दाश्त न कंदासीं। आलमी साज़िशनि खे समझणो पवंदो, लफ़्ज़नि खे दुरुस्त चूंड करणी पवंदी। कश्मीर में दहशतगर्दी वारी सियासत जी हिमायत न कंदासीं। मौजूदा हालतुनि जो मुक़ाबलो ताक़त सां नथो करे सघिजे, ज़िमेवारी जो मुज़ाहिरो करणो पवंदो। मौजूदा बोहरान हिकु वफ़ाक़ी वज़ीर जी करे थो। वफ़ाक़ी हुकूमत मसलो हल करे कश्मीर जो मसलो कश्मीर में ई हल करणो पवंदो। मोदी सिंतास मुआहिदे ते हमिलो करे रहियो आहे। असां सभु जवाब ॾियण लाइ तयार आहियूं। सिंधुअ जे पाणीअ ते को बि ठाह न कंदासीं।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जी हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट
4: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
5: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
4: सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। सिंध की आवाज।
1: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क बाज़।

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: It's 10:30 a.m. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de char guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
3: कमर दर्द या पट्टों की सूजन से परेशान हैं?
2: अब दर्द को कहें अलविदा
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ.
2: जी हाँ,
3: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
2: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट.
3: ये ऑइंटमेंट
2: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
3: दर्द, सोजिश
2: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है.
3: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
2: गर्दन और कमर की तकलीफ,
3: पट्टों के खिंचाव, मोच,
2: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
3: और जल्दी जलन में मुफीद.
2: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं.
3: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
2: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मायार.
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए.
4: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ बिंदीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो. अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान.
0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़.

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: दिस टाइम चेक वाइज
3: अल हबीब करंट प्लस उसा भी रफ्तार भी रिश्ता भरोसे का।
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़।
5: नीलासी खेस डेडलाइन देन पसंद ना है। ईरान के पंजो रवैयो ठीक करण घुर्जे। ईरान मुआहदो न कयो त ईंदड़ हफ्ते बिजली घर ने पुलन के तबाह कयो वींदो। ईरान में अजा कुछ जंग विरण जी सलाहत है पर उआ घड़ी ना है। अमेरिकी फौज जा पंजे डीं भी ईरान ते शदीद हवाज जा बार बंदर अब्बास केश धमाकन सा गुंजी उथिया। गवर्नर हबीब खान जो चवण है त अमेरिकी हमले सा केश में फिश पाउडर ठाईंदड़ फैक्ट्री के नुकसान पहुतो है। फैक्ट्री खाली हुजण सबब जानी नुकसान न थियो। अमेरिकी सेंट्रल कमांड पारा ईरान ते हमलन जो ताजो सिलसिलो मिलान। ताजन हमलन में इराकजन ड्रोन सलाहत ऐं साहिली निगरानी वारन मर्कजन के निशानो बणायो वियो। बंदर अब्बास में भी फौजी ठिकाणन के निशानो कयो। कार्रवाइन जो मकसद हरगम्ज लांग में हमलन जी ईरानी सलाहत के कमजोर करण हो।

0: ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालेबाफ है तो ईरान कदें भी जंग की आजियां ना कई है न वरी करे तो पर मुल्क की कौमी सलामती मुफाज हर वक्त तैयार रहंदो है। दुश्मन की हिकमत अमली तब्दील ना थी। ईरानी फौज के जहरियत जो मुकाबलो करण की आजादी हासिल है। ईरानी परदेही वजारत के तर्ज बकाये ईरान जो फिलहाल वायदानती याददाश्त तहत जिम्मेवारियों खत्म क्यों बी धुर जिम्मेवारियों खत्म क्यों तो ईरान के भी पैं जिम्मेवार का पासो करणो पो। सखर जे सेंटर फाहो खाई आप वरियन जे कैदी दिनेश कुमार जेल अस्पताल जे वॉशरूम में अगट सा फाहो। जेल इंतजामिया जो चवण है तो आपघात कंदड़ कैदी के शराब जे केस में जेल मुंतकिल कयो वयो हो। वारसन लाश पोस्टमार्टम कराइण का इनकार करे छडियो आहे। अठ अठ मोरी में ब्रो जमीन जे तकरार जरगो धुरिन ते पंद्रह सालन का हलंदड़ तक जेड़े फैसलो अली जिले चेयरमैन अली अकबर जमाली ए बेन जी सरपंची हेठ थियो। फैसले में 10 जणन जे जख्मी थियण जो बिन्ही धुरिन ते मजमू तौर 85 लख रुपया दंड धुरियूं दंड जी रकम 2 महीनन अंदर फैसले जे अमीनन वट जमा कराईंदियूं।
1: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले औ बाकी
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
4: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश। फकीरी एनर्जेसिक क्रीम
4: कुदरती अज्जा से तैयार करदा।
5: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
4: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
5: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
4: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
5: गर्दन और कंधों के दर्द
4: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
5: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
4: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
5: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीब करें।
6: तो आप सिंध की वेब नेटवर्क सिंध की आवाज।

0: मोहब्बत थी यार, मेरी जिंदगी थी वो।
1: मेरी जिंदगी है तू,
2: मेरी जिंदगी है तू। देखिए हर जुमा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ ARY डिजिटल पर।
3: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज़
4: GFM 91.6।

में आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं तीन तरीके कार से. आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, एस के आर टाइप कीजिए, स्पीसी मैसेज टाइप कीजिए, सेंड कीजिए 8881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है www.facebook.com/gfm88 के पेज के ऊपर आपको मिलती है पोस्ट. इसके साथ साथ है 0111 और कॉल करने के बाद आप लोग दो अदर सेगमेंट होंगे हमारे जिसमें हम आप लोगों के लाइव कॉल्स को एंटरटेन करेंगे. ठीक है, सो ये होगा. और हम चलेंगे आगे और हम प्ले करेंगे एक और गाना और इस गाने के साथ हम जाएंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक की जानेब. आपने कहीं नहीं जाना, मेरा साथ देना है क्योंकि आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है.

0: अच्छा जो अभी संगीत
1: 11:30
2: हमें डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम कुछ साथ तैयार डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
3: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट
3: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली
3: चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
3: फकीरी
2: ने जरासीम से डरने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
3: हर अच्छे स्टोर से नाम लिए।
4: अब आप ही का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: जिस धरती से जुड़ते
2: की बनी है आवाज,
1: GAFM नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।

0: अभी बुध मचा सिंध जो आवाज बुधन
1: बाजी हमारो हम तुम्हारो गाना सुनाए था तो दिसो यार मुझे जो कुर्बानियों दरत में पंथड़ा तो करे कद हवेर सवेर थी वेंदी दर ते बि सॾड़ा तो करे ॾिसो यार मुझे जू कुर्बानियूं दरत में पंथड़ा तो करे बाजी मास्टर मंज़ूर न कमूदो जे ॿुधाए अथऊं त तंहिंजी महिरबानी थींदी कुझु हमारे पास दोस्त बि आहे हमारे को बाजी थोड़ो एक सवाल करता है हम तुम्हारे पास तो तुम उर्दू बात करते हो सिंधी करते है हमारे को तुम्हारी बात समझ में नहीं आती है ताले सिंधी है उर्दू है
2: समझ में नहीं आती माशाल्लाह उर्दू तो आप बहुत अच्छी बोल लेते हैं
1: जी जी बिल्कुल तो हमारे पास कुछ बेटी दोस्त है
2: हाँ जी
1: हाँ मेरा भाई है जहीरम जतोयो निमला जतोई बुजाद जतोई बागो जतोई अमुजाद जतोई शेरमन जतोई जारान जतोई वहीद जतोई पारा सजे सतक सलाम
2: ओके
1: मास्टर बुधरे जो बाजी
2: ओके

ओके जी, नेक्स्ट कॉलर लेते हैं, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. हेलो. ओके जी, हेलो. ओके, अल्लाह हाफिज़. 0113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं. सो कॉल कीजिए और सुनाइए एक अच्छा सा गाना. और नेक्स्ट कॉलर, हेलो. ओके जी, नेक्स्ट लेंगे कॉलर. नेक्स्ट कॉलर, हेलो. ओके जी, नेक्स्ट.

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 7:30 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: खुशखबरी खुशखबरी अमाजे बारे जे बेहतरीन करियर आई रोशन मुस्तकबिल जे लाए सखर जो मशहूर आई मन

0: वीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुर्रियों छाइयों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 मिंटन ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: किया है सिंधजी दिल। ये मटियारे एफएम 91.6 जो आवाज।
1: ओ मुझे मस्त मल कही मारू डुगर खा भी जाधा नियर नहीं का चीज में आहे नकी करो।
2: 60 हुसैनी मंजिल हाउसिंग स्कीम सखर
3: तवां जे महफूज मुस्तकबिल इन्वेस्टमेंट जो बेहतरीन।
2: अगेन सुर लगाओ गाना सुनाओ सेगमेंट हमारा, आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स और मैसेजेस हमें वसी होते जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम लेंगे नेक्स्ट कॉलर और चेक करेंगे कॉलर कहाँ से हमारे लाइन पे मौजूद है। हेलो,
4: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम सागर भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक?
4: नहीं
2: है, तबीयत सही नहीं है। क्या हुआ है, खैरियत है?
4: बुखार है मैम।
2: बुखार है, चले बुखार आपका इंशाल्लाह जल्दी सही हो जाएगा। मुझे ये बताइएगा कि गाना गाएंगे?
4: गाना हाँ, थोड़ा ही गाऊंगा,
2: थोड़ा ही गाना
4: है, दो चार अल्फाज ही गाऊंगा। अली जफर ने गाया, पता नहीं किसने गाया है। जो मस्ती के दिन है चलो जो मर जाए, चलो जो मर जाए। आगे नहीं आ रहा है मुझे अल्फाज।

चले मैं प्ले करती हूँ, आगे आगे आप खुद सुन लीजिएगा, ठीक है? ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। और हम प्ले करने जा रहे हैं अली जफर की आवाज में मस्ती, सुनेंगे, एंजॉय करेंगे। और इस गाने की एक लाइन है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और वो क्यों पसंद है, वो सिर्फ आप लोगों के लिए पसंद है और वो सूट करती है कि मेरी तरफ से अगर वो आपकी मतलब आपको डेडिकेशन के लिए जाए तो वो लाइन बहुत खूबसूरत है। और वो लाइन क्या है, वो आएगी जब, तब मैं आपको बताऊंगी। मिलके सुनते हैं, इंजॉय करते हैं।

0: प्यार करे है जिंदा मुझे हर बार। और सिर्फ मैं ही नहीं, मतलब जितने भी प्रेजेंटर्स होते हैं, चाहे वो किसी भी मीडियम के ऊपर हो, लाइक रेडियो के ऊपर हो या फिर फिल्म के ऊपर हो, किसी भी मीडियम के ऊपर अगर कोई होस्ट या फिर कोई प्रेजेंटर अपनी सारी प्रॉब्लम्स को या अपनी सारे दुख दर्द को पसे पुश डालकर आपके लिए, आपको इंटरटेन करने के लिए वो अपने सारे दुख भूल जाता है, तो इट मीन्स कि आपका प्यार करे है जिंदा उसे हर बार। तो ये बहुत खूबसूरत लाइंस जो कि मेरी तरफ से आप लोगों के लिए जाते हैं। इसी बात पे हम लेंगे नेक्स्ट कॉलर और चेक करेंगे कॉलर कहाँ से। हेलो,
1: अस्सलामुअलैकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम। कौन कहाँ से?
1: जी रुखसार, कैसे हो आप? मैं हीरा बात कर रहा हूँ सांगर से।
0: हीरा बात कर रहे हैं?
1: जी हीरो मेरा नाम है, सांगर से बात कर रहा हूँ। आप कैसे हो जनाब?
0: पहले सोच ले, हीरो या हीरा?
1: हीरो हीरो
0: हीरो। ओके, अच्छा हीरो मुझे ये बताइएगा कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं जिला सांगर से बात कर रहा हूँ।
0: ओके ठीक है, गाना सुनाएंगे कोई हीरो वाला?
1: जी
0: हीरो वाला कोई गाना सुनाएंगे हमें?
1: नहीं अभी मैं गाना तो नहीं सुनाना चाहता, लेकिन ऐसे ही मैंने आपके प्रोग्राम में कॉल किए और शरीक होया हूँ। हमें जी जी
0: चले जबरदस्त प्रोग्राम सुनते हैं।
1: और कैसे हो रुखसार, ठीक हो आप?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब गाना आपको गाना नहीं आता तो आप हीरो कैसे हुए? ये आपका अच्छा। वाकई आपका नाम है या फिर वैसे ही आपने रखा हुआ शो किया?
1: नहीं नहीं मेरा नाम ही हीरा हीरो है।
0: अच्छा नाम ही हीरो है, चलें ठीक है।
1: तो मुझे आते हैं लेकिन अभी सुना नहीं सकता मैं।
0: अभी सुना नहीं सकते, चलें जबरदस्त, बड़ी अच्छी हीरो है।
1: आपका शो बहुत प्रोग्राम अच्छा चल रहा है, हम भी सुन रहे हैं मतियारी चैनल पे। और जी जी सारे सुनने वालों को हमारे तरफ से बहुत
0: ओके अल्लाह हाफिज, थैंक यू। 03000113488 जिसके ऊपर आप लोग कॉल्स कर रहे हैं, सेगमेंट है हम रब से हरा भरा पाकिस्तान। सलाम, कौन कहाँ से?
1: हाफिज सावल बात कर रहा हूँ मोर से, बजपर के हाल है, ठीक हो?
0: जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हाफिज से अच्छा सा गाना
1: मुझे यार जिसका

0: आवाज चली गई आपकी. हेलो
1: यार अधिकार
0: ओके किसी को डेडिकेट करना है
1: आखिर लक्ष्मी ढेलो
0: में. चलिए जी थैंक यू सो मच. हम प्ले करने जा रहे हैं जी गाना और हाफिज भाई का गाना हम ब्रेक के बाद वापस आकर प्ले करेंगे. हमारे पास मौजूद है बिलाल सईद की आवाज में खूबसूरत सॉन्ग, इसको सुनेंगे एंजॉय करेंगे और इसी के साथ हम जाएंगे न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक. दोनों के बाद वापस आएंगे. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन जी एफ एम रेडियो नेटवर्क सिंध की आवाज.

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6
2: एक्सप्रेस PM दिस चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: अल हबीब करंट प्लस अकाउंट भरोसा भी रफ्तार भी बैंक अल हबीब रिश्ता भरोसे का
4: अब आप सुनेंगे GFM नेटवर्क पर KTN
5: पाकिस्तान एक भेरो बीहर अमेरिका ईरान में शुरू थियल छिकताण ते गणती जाहिर करे छी धुरिन खां सह पै सबर जो मुजाहरो करण जो मुतालबो मसलो गालिन जरिए हल करण ते जोर भरियो पर ॾेही तर्जुमान ताहिर हुसैन चयो आहे ते हिते जी मौजूदा सूरत हाल ते नज़र आहे पाकिस्तान मसले जे हल लाइ ॻाल्हियुनि ते यकीन रखे थो धुरियूं सूरत हाल ते सबर ऐं सहप जो मुज़ाहिरो कनि तकरार कंहिंजी मुफ़ाद में नाहे इस्लाम

सिंध में पाणीअ जी खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि सरापा एहतजाज। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। नंदू में हारे नए आबादगारनि प्रेस क्लब अॻियां भुख हड़ताल कई। ठिकराटो में महर माइनर जे आबादगारनि पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। अठ अठ मोरीअ जे आबादगारनि जाम लगारी शाख में पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। पोछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो। चोहड़ जमाली वेझो ॿिनि धुरियुनि में मामूली ॻाल्हि तां झेड़ो। हिकु ॼणो क़तल। ॻोठ गुल मोहम्मद छिरेजो में छिरेजा बिरादरी जे ॿिनि धुरियुनि में झेड़ो थियो। जवाबदारम गुलाम नबी खे लतूं मुकूं हणी क़तल कयो। हिकु ॼणे जे क़तल बाद धुरियुनि में छिकताण वधी वई। सांगड़ में पुलिस लाक में फोत थियल बे आईएसपी जी डिवाइस होल्डर जे वारसनि जो लाश रखी धरणो। पुलिस ते अब्दुल्ला लांडर खे तशदुद करण मारण जो इल्ज़ाम। ज़िमेवार अहलकारनि ख़िलाफ़ कार्रवाई जो मुतालबो। पुलिस चयो आहे त अब्दुल्ला लांडर दिलि बीहण सबबि फोत थियो आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो GAFM 91.6।
2: यार कुछ डीन खा चेल जो सूर जोड़न जी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
3: तो पोई तू फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो न तो करी?
2: इहा वाकई फायदे वारी आहे छा?
3: बिल्कुल, फकीरी डेक्स मरम मुतासिर थे हंदते आसानी सा जजब थी, सूर आई सोडियम आराम पहुँचाने में मदद दे थी।
2: सिर्फ चेल ही सूर लाए
3: न दा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध आई चेल जी तकलीफ, सट, धक लगन, पुराणन जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे।
2: इस्तेमाल किए कजे?
3: मुतासिर थे हंध ते डी में ब खा टे भेरा नरमी सा लगायो आई आराम जो एहसास हासिल करो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खा आराम, हर रोज हर कदम। अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
4: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: It's 12:15 PM.
3: This time check is brought to you by
4: D Skin Beauty Cream, Asli Glow, Har Niya Josho. A product by Biocon International, Pakistan.

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज।
1: ओ पिता जा पिताई पिता देव से नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज
2: आपने है वो अपने फार्म को सस्टेनेबल नहीं कर पा रहा है, अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में सूरत हाल ये बन चुकी है कि आज घाटे की एग्रीकल्चर करके किसान का जो बच्चा है वो भी किसान नहीं बनना चाह रहा। तो ऐसे में बहुत जरूरत थी कि हम कोई ऐसे इनिशिएटिव्स लें, कोई ऐसे काम करें जिससे हम किसान को अपने पैरों पर खड़ा होने में उसकी मदद कर सकें, उसकी किसान के जो फार्म की इनकम को सस्टेनेबल कर सकें। तो बीइंग ए किसान का एक जो बेटा है मेरे लिए एक चैलेंज था। तो सबसे पहले चूंकि हमारे पास थोड़ी सी आबाई जमीन थी उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया, एक एग्री टूरिज्म का एक फार्म हमने बनाया। तो उससे इतना हौसला अफजा, इतना परफेक्ट उसका नतीजा निकला। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपने बाकी किसानों को भी इस आइडिया की जो तबलीग करूंगा, उनको भी इस आइडिया के बारे में बताऊंगा ताकि वो भी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो इस तरह ये हमने कोई 30 साल पहले मैंने ये सफर का आगाज किया और आज पाकिस्तान में गिलगित से लेकर कराची तक हजारों किसान जो है इस आइडिया से जुड़े हुए हैं और इस एग्री टूरिज्म के आइडिया से वो बेहतरीन पैसे भी कमा रहे हैं।
3: अच्छा तारिक तनवीर साहब, आप हमें ये बताइए कि आपके ख्याल में सस्टेनेबल टूरिज्म क्या है और ये पाकिस्तान की जितनी भी रूरल डेवलपमेंट है इसमें किस तरीके से अहम किरदार अदा कर सकती है?
2: देखिए, अभी हमने देखा कि जब भी हम किसी भी इलाके को टूरिज्म के तौर पे यूज करते हैं तो वहाँ पे एक होटलों की एक मशरूम ग्रोथ शुरू हो जाती है। लोग वहाँ पे आके इस तरह एंटरप्रेन्योर्स वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं कि वहाँ की हर चीज को वो पोल्यूटेड कर देते हैं, उसको हम कचरे का घर बना के रख देते हैं। अभी भी देखिए, ये जो सस्टेनेबल टूरिज्म का जो एक जो मतलब ही होता है कि जो हमारी रीजनरेटिव टूरिज्म, जिस तरह हमारे फोर फादर ट्रेवल करते थे, इस तरह वो चीजों को देखते थे जहाँ पे वो रहते थे। तो जो एग्रीकल्चर की जो टूरिज्म है इसमें जब हम फार्म स्टे की बात करते हैं, फार्मर की टूरिज्म की बात करते हैं, रूरल टूरिज्म की बात करते हैं, तो ये वो टूरिज्म है जिससे एक यूनिफॉर्म किस्म जो है इनकम जनरेट या यूनिफॉर्म किस्म की जो है टूरिस्ट वहाँ पे आता है, जिससे कि हम किसी तरह की माहौलियाती आलूदगी और बाकी किसी भी तरह के जो प्रॉब्लम है उनको जो है ना मिनिमाइज, बल्कि वो बिल्कुल होते ही नहीं है उस तरह के। तो ये किसी भी इलाके की जो जिस तरह हम रूरल आज डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, देहाती जो है ना इस तरह की सेटअप में लोगों का आना, वहाँ पे आके ठहरना, ये ना सिर्फ उस इलाके की जो है ना डेवलपमेंट में मददगार साबित होता है बल्कि इससे जो बहुत सा प्रेशर जो हम शिमाली इलाका जाते हैं हमारा पड़ जाता है वो भी काफी हद तक जो है वो कम हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में हम अपने गांव हमारे चूंकि बहुत खूबसूरत हैं और गांव के कोई खाना भी एक बड़ा खूबसूरत है, तो हम अब रूरल डेवलपमेंट के लिए जो सबसे बड़ा टूर है वो रूरल टूरिज्म है और एग्री टूरिज्म है और यही दोनों ऐसे आइडिया हैं जो एक सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रेजेंट करते हैं।
3: जी तारिक तनवीर साहब, अब हम थोड़ा सा इस तरफ आते हैं क्योंकि बहुत सारे इस वक्त हमें हमारे किसान भाई भी सुन रहे हैं, बहुत सारे किसान भी हमें सुन रहे होते हैं, तो आप हमें ये बताइए कि जो एग्री टूरिज्म है वो किसानों की आमदनी बढ़ाने में किस तरीके से मदद कर सकता है, क्योंकि फार्म ब्रांडिंग, वैल्यू एडिशन, फार्म विजिट्स और बराह रास्त मार्केटिंग से किसानों को आप हमें बताइए कि क्या क्या फवायद हासिल हो सकते हैं।
2: जैसे एग्री टूरिज्म जो है ये बेसिकली किसान को जो है ना नए आइडियाज, नई सोच देता है। जिस तरह आप देखिए, हम शहरों में देखते हैं कि एक चाय का छोटा सा जो ढाबा बना होता है या पान का एक छोटी सी शॉप होती है, उसका भी एक नाम होता है, उसका एक ब्रांड होता है, उसका नाम रखा जाता है, लोग उसको उस नाम से ही जानते हैं। तो जो किसान है उसने अपने फार्म का कभी भी नाम नहीं रखा, उसको नहीं पता कि मैंने अपने फार्म को ब्रांड करना है, मैंने अपने फार्म का नाम रखना है और मेरे अपने फार्म के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा हुआ जिस पे लिखा हुआ कि मैं ये चीजें उगाता हूँ, मेरा ये नाम है, मेरा ये नंबर है, इसको अगर कोई ये चीज चाहिए तो मेरे इस नंबर पे रابطہ कर सकता है। तो ये किसी भी फार्मर ने नहीं किया। तो एग्री टूरिज्म में सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो तो फार्मर की ब्रांडिंग करते हैं और फार्म की ब्रांडिंग करते हैं, यानी फार्म का एक नाम होता है और फार्मर जो है अपने नाम की पहचान के साथ अपनी चीजें जो है ना वो बेचता है। और सेकेंडली हम उसको वैल्यू एडिशन पे जो है उसको ट्रेनिंग देते हैं, जो उसको प्रोग्राम देते हैं कि आपने जो रॉ मटेरियल में अगर जब देखिए जब भी किसान की प्रोड्यूस मार्केट में आती है तो उस टाइम में चीजें इतनी चीप होती हैं, इतनी वो सस्ती होती हैं, किसान को उसका बेहतर मुआवजा नहीं मिलता। तो ऐसे में वो अगर वो वैल्यूटेशन करता है, अपनी चीजों को बेहतर ब्रांडिंग करता है, उसकी बेहतर पैकेजिंग करता है, उससे कोई प्रोडक्ट बना के बेचता है, तो उससे वो कई मल्टी टाइम ज्यादा पैसे जो है ना वो कमा सकता है। जैसे अगर मैं मिसाल दूं कि अगर हमारे पास किसी टाइम में कोई सब्जी ऐसी, जैसे आप गोभी की बात कर लेते हैं, अगर हम पुली की बात कर लेते हैं, वो जब वो 2-4-5-10 रुपए पर केजी तक सेल हो रही होती है, फार्मर की मैं आपको बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में अगर जिस तरह हमारी दादियां परदादियां घरों में अचार बना लेती थी, जैम बनाती थी, मुख्तलिफ इस तरह के वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट बनाती थी, तो वही काम आज किसान की जो बीवी है, जो किसान की बेटी है, उसने भी यही काम करना है कि अपने वालद अपने शौहर की उगाई हुई जो प्रोडक्ट है उसको उसने वैल्यू एडिशन में लेके जाना है और उसका एक प्रोडक्ट बनानी है, उसके ऊपर अपना नाम लिखना है, फिर शहर के लोगों को बेचना है। आज भी उस तरह का अचार जो है, मैं आपको बताऊं कि कोई भी जो है ना इंडस्ट्री नहीं बना पाती। तो ये जो वैल्यू एडिशन है, ये हमारी सेकंड जो है वो प्रायोरिटी होती है। और इसके बाद हम फार्मर को सिखाते हैं कि आपने अपने फार्म के ऊपर लोगों को बनाना है, वहां पे उनको एंटरटेन थोड़ी सी दिखानी है और उनको टेंशन फ्री टाइम गुजारने का मौका फराहम करना है। ये वो 2-3 चीजें हैं जिसको अडॉप्ट करके हमारा जो किसान है वो अपने फार्म की इनकम जो है वो बेहतर कर रहा है।
3: ओके जी, तारिक तनवीर साहब, आप हमें ये भी बताइए कि जितने भी अगर मतलब इंटरनेशनल टूरिस्ट अगर आते हैं टूरिज्म के लिए, और जितने भी हमारे किसान भाई हैं, चूंकि वो इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, तो अगर कोई इंटरनेशनल टूरिस्ट आता है और वो कोई मतलब के किसानों से अगर राबता करना चाहे, तो कोई सोशल मीडिया पेजेस या फिर कुछ इस तरीके से कोई मतलब जिनसे वो किसानों को रीच आउट कर सके, तो इस तरीके की कोई चीज अगर आप बताना चाहें।
2: देखिए, बिल्कुल, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान, एक ब्रिज का काम करती है, हम एक पुल का किरदार अदा करते हैं। आप भी अगर पूरी दुनिया में जाते हैं, अगर आप स्ट्रॉबेरी पिकिंग पे आप फार्म पे जा रहे हैं, आप एप्पल पिकिंग पे जा रहे हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज के लिए फार्म के ऊपर आप जाते हैं, तो पाकिस्तान में भी हमारे पास सैकड़ों के साथ ऐसे फार्म अब डेवलप हो चुके हैं। हमारे किसान जो है वो अपनी प्रोडक्ट बना के बैठे हैं, मुख्तलिफ हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना के किसानों को इसमें करें। तो जो हमारा एग्री टूरिज्म का जो हमारा प्लेटफॉर्म है, ये एक ब्रिज का काम करता है। हमारी साइड पे जितने भी किसान हैं उन्होंने अपने अपने सोशल मीडिया पेजेस बनाए हुए हैं, और जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं वो हम डिफरेंट फेस्टिवल्स कराते हैं, डिफरेंट इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, डिफरेंट वर्कशॉप कराते हैं। हमारे एक साल में तकरीबन 100 फेस्टिवल जो होते हैं, कभी आप बनाना फेस्टिवल कर रहे हैं, कभी मैंगो फेस्टिवल कर रहे हैं, कभी ओलो मेला हो रहा है, कभी जतून मेला होता है, कभी गुड़ फेस्टिवल हो रहा है। तो ये सारे मेले जो होते हैं, ये किसान वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट भी प्रेजेंट करते हैं, जो इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं हमारे इन मेलों के अंदर आते हैं, फिर उनकी डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है ना वो डेवलप होती है और उनके फार्म को भी विजिट करते हैं। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, तो हमारे साथ किसान भी जुड़ते हैं और आम जो टूरिस्ट जो एग्री टूरिज्म में जाना चाहता है वो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हम दोनों को आपस में जो है ना रब्ता करा देते हैं दोनों को आपस।
3: ओके जी, अच्छा, अगर हम जनरेशन की बात करें और जितनी भी हमारी खवातीन हैं उनकी बात करें, तो खवातीन और नौजवान एग्री टूरिज्म में किस तरह अपना किरदार अदा कर सकते हैं, एक तो चीज आप हमें ये बताइए, और जितनी भी हमारी देही खवातीन हैं जो होम फूड्स बनाती हैं, दस्तकारी करती हैं, नर्सरी करती हैं, फूड प्रोसेसिंग करती हैं, और जितने भी नौजवान हैं, जी
2: बहुत इम्पोर्टेंट बात आपने ये शुरू की है, इसको मैं समझता हूँ कि किसान जो है वो शायद उस तरह जितनी आप बातें करते हैं वो उस तरह इसमें कोलैबोरेट नहीं कर पाएगा, या उस तरह उसको अंडरस्टैंड करना उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ग्रो करना एक काम है और उसको प्रोसेस करके मंडी तक लेके जाना या किसानों घरों तक डायरेक्ट जो लोगों को बेचना, ये दूसरी बात होती है। तो मेरा ख्याल है, हेलो, आवाज आ रही है?
3: जी जी, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है,
2: मेरी आवाज सुन रहे हैं आप लोग?
3: बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू कीजिएगा प्लीज।
2: सर चले बेहतरीन, अच्छा, मैं यही कह रहा था कि जो हमारे लिख गए हैं जो यूनिवर्सिटियों में उन्होंने डिग्रियां ले ली हुई हैं, तो वो जब वापस जाते हैं गांव में, तो उनको चाहिए जाके कि वो अपने पेरेंट्स के लिए एक स्पोर्ट का काम करें, और वो जो बच्चियां हैं या खवातीन हैं वो घर में जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, जिसको हम घरेलू इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, जिसको हम कॉटेज इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, वो छोटी छोटी चीजें जो है ना इस तरह की बनाने की, पैकिंग की इंडस्ट्री बनाएं, और ई कॉमर्स जो है इसके जरिए आजकल देखिए जो मोबाइल है आजकल हर बंदे के हाथ में है, सोशल मीडिया हर बंदे के हाथ में है, तो हमारे बच्चे उसको बहुत हमारी यूथ जो है उसको समझती है। तो अपनी बाप की, अपने भाई की और अपने शौहर की पैदा की हुई चीजों को उसको बेहतरीन तरीके से ब्रांडिंग करके उसको ई कॉमर्स के जरिए पूरे पाकिस्तान में उसको बेचें, तो शहर के लोग भी आज अच्छा चीजें जो है ना वो डायरेक्टली, जैसे अभी मैं मैंगो की बात करूं, इस तरह हमारे देशभर किसानों ने ऑनलाइन मैंगो बेचना शुरू किया, जामुन ऑनलाइन बेचने शुरू की, ऑलिव के प्रोडक्ट ऑनलाइन बेचने शुरू किए। तो ये नौजवानों का काम था जो कि आईटी में भी एक्सपर्ट थे और उनका तलक भी जो है ना एग्रीकल्चर से था, तो उन्होंने ये, मैं समझता हूँ किसान के जो ये नौजवान बच्चे हैं और उनकी खवातीन है उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो घर में बैठ के अपनी उगाई हुई चीजों का, जैसे मल्टीग्रेन आटा है, आज भी शहर में जो आटा मिलता है वो सूजी और उसमें से निकली होती है, उसमें से जो हमारा मैदा निकला होता है वो इतना कोई सेहतमंद आटा नहीं होता। तो अगर किसान के बच्चे जो है उसको एक अच्छा आटा बनाए, होल वेट आटा उसको कह सकते हैं या पत्थर की चक्की का आटा कह सकते हैं या मल्टीग्रेन आटे का नाम दे के उसको 5 किलो की अच्छी पैकिंग के साथ पूरे पाकिस्तान में उसको बेच सकते हैं, तो ये खवातीन घर में बैठ के उसको वैल्यूडेशन करे और जो नौजवान है उसको एक अच्छी ब्रांडिंग के साथ बेचें। और फिर जो शहर के टूरिस्ट है वो जब फार्म पे आते हैं तो ये जो नौजवान है ये उनको अपने साथ खेतों की सैर करें, टूर गाइडिंग करें, तो वहां पे नाइट स्टे के लिए डिफरेंट अरेंजमेंट्स करें। तो इस तरह जब शहरों से लोग गांव में आते हैं, पैसा खर्च करके जाते हैं, तो गांव की सतह पर जो प्रॉस्पेरिटी आती है, इससे खुशहाली आती है, क्योंकि इससे डायरेक्ट पैसा गांव में इंजेक्ट होता है और इसका बेनिफिशियरी जो होता है वो फार्मर होता है, उसके बच्चे होते हैं और उसके घर वाले जो बीवी बच्चे सब तक वो इक्वली उसकी प्रॉस्पेरिटी के जो साथ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि खवातीन को इंपावर करने के लिए और यूथ को नए आइडियाज देने के लिए बेहतरीन इस टाइम मौका है कि हम एग्री टूरिज्म के मॉडल को अपनाएं।
3: ओके जी, तारिक तनवीर साहब, टाइम भी बहुत लिमिटेड है हमारे पास, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आखिर में आप पाकिस्तान के नौजवानों, किसानों और खवातीन मतलब कि उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे, किस तरीके से वो सरमायाकारों को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो आइंदा 5 से 10 साल के लिए आपका विजन क्या है उस पर भी थोड़ी सी नजर डालिएगा।
2: देखिए, एक चीज, अब हमारी सारी बातें, खैर अभी चूंकि टाइम बड़ा थोड़ा है, आप हमारी जो एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान की आप अनाउंस कीजिएगा, हमारी जो सोशल मीडिया पेज भी है, फेसबुक पेज है, वहां पे हमारी पोस्टें आती रहती हैं, उसमें अपॉर्चुनिटीज पे बात होती है, उस पर मसाइल पे बात होती है, फिर वसाइल पे बात होती है, उस पर हम पॉलिसी मेकिंग पे बात करते हैं, उस पर किस तरह आइडियाज के ऊपर बात होती है, तो उसको पेज को विजिट किया जा सकता है। तो मुख्तसर मैं यही कहूंगा कि जो हमारा ज़राअत का जो मुस्तकबल है वो वैल्यूडेशन है, और चूंकि अब हमने ज़राअत में चीजें उगा के देख ली कि अब हमारा जो आलू पिछले साल देखे वो हमने ज्यादा पैदा किया तो वो भी रुल गया, किसान को उसका कोई फायदा नहीं हुआ, इसी तरह प्याज है, बाकी चीजें हैं, 2 साल पहले हमारी गंदम के साथ भी यही हुआ। तो मेरा ख्याल है कि आने वाला जो फ्यूचर 10-15-20 सालों का है वो वैल्यूडेशन है कि हमने प्रोसेस करके हमने अपनी चीजों को पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए वैल्यूडेशन करना बहुत जरूरी है। तो मेरा पैगाम भी यही है, पॉलिसी मेकिंग के लिए भी यही है और अपॉर्चुनिटी भी यही है मुस्तकबल की कि अब वैल्यूडेशन की एग्रीकल्चर का जो मुस्तकबल है, हमारे नौजवानों को वैल्यूडेशन की एग्रीकल्चर पे सोचना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं चाहूंगा कि हमारे जो खवातीन है वो किसी से कम नहीं है, वो आगे आए और अपने अपने अच्छे जबरदस्त किस्म के अपने एग्रीकल्चर ब्रांड बनाएं, प्रोडक्ट की ब्रांड बनाएं और उसको मोबाइल के जरिए, इस सोशल मीडिया के जरिए इसको, इस पावर को इस्तेमाल करते उसको बेचें। और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि इस तरह के जो डिफरेंट जहां फेस्टिवल करते हैं कनेक्टिविटीज में, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन डिपार्टमेंट जो है वो लोगों को ट्रेनिंग दे कि किस तरह आपने अपनी प्रोड्यूस जो है ना वो बेचनी है। तो मेरा ख्याल है कि इस तमाम आइडियाज को हम अगर अडॉप्ट कर ले तो हमारा किसान जो है वो भी खुशहाल हो जाएगा और रूरल जो डेवलपमेंट है जो हमारी सबसे बड़ा गोल है कि हमने देहातों की सतह पर हमने प्रोस्पेरिटी लेके आनी है तो वो भी गोल पूरा होगा, क्योंकि किसान हमारी पाकिस्तान का 70% लोग हैं। अगर ये 70% लोगों को हमने खुशहाल कर लिया तो पाकिस्तान जो है ना वो भी खुशहाल हो जाएगा।
3: बिल्कुल जी, ऐसे ही है, बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया तारिक तनवीर साहब। अच्छा, जिन पेजेस की आप बात कर रहे हैं अगर उन पेजेस का नाम लेके आप बता देंगे सुनने वालों के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी रीच आउट करने के लिए।
2: इसमें देखिए, एक तो इसी नाम से एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये एक सोशल मीडिया का पेज है, इस पे अभी तक हमारी कोई मेरी को 50,000 जो है ना इसके ऊपर मेरी पोस्टें पड़ी हुई हैं। और इसमें अगर हम देखिए हमारे जो फेस्टिवल्स होते हैं पूरे साल में, कैलेंडर बना होता है, कि जो कौन से इलाके में कौन सा इवेंट होना है वो भी सारा इसी के ऊपर पड़ा होता है। तो एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पाकिस्तान, ये हमारी सोशल मीडिया पेज है, और www.atdcp.com ये हमारी वेबसाइट है। उसके ऊपर बेशुमार किसानों ने अपने ये जो है ना अपने अकाउंट बनाए हुए हैं, और लेने वाले और देने वाले को जो हम ब्रिज का काम करते हैं इसी साइट के जरिए करते हैं, उससे भी वो हमसे रब्ता कर सकते हैं।
3: ओके जी, थैंक यू सो मच मिस्टर तारिक तनवीर साहब, आप हमारे साथ रहे, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन द शो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
2: थैंक यू
3: वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। ओके जी, अल्लाह हाफिज, थैंक यू। और ये था आज का सेगमेंट हरा भरा पाकिस्तान, जिसको सपोर्ट करता है HFT पाकिस्तान, हैप्पीनेस फाउंडेशन ट्रस्ट पाकिस्तान। और आई होप जुगी जी आज का सेगमेंट भी आपको बहुत पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। इसी के साथ सेगमेंट का जो टाइम है वो यहीं पे खत्म होता है। हम लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है फ्रॉम योर फेवरेट रेडियो स्टेशन GFM रेडियो नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश, फकीरी एनर्जेटिक क्रीम,
4: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
5: ये मुआसर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
4: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
5: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
4: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
5: गर्दन और कंधों के दर्द
4: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब,
5: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
4: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
5: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।
6: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
7: शाह लतीफ का सूफी ठिकाना,
8: फादिये मेहरान, सिंध की एक और पहचान।
7: GAFM नेटवर्क,
8: सिंध की आवाज।

0: हार के वो जा रहा है जो कोई शिकार क्या गए के रूठ गए
1: की आवाज खुशखबरी अभेद सिराजुद्दीन स्टडीज सखर पारा नर्सिंग एंड फिजियोथेरेपी नए सेशन लाए दाखला जो शानदार ऐलान रिंके बनायो हेल्थ करियर प्रोफेशनल जस एन जी बी एस एम एंड पंज साल डी पी डी जने ते बिन साल सी एम डब्ल्यू खास
2: लहर जी एफ वर्क सिंध की

0: देखिए कलंदर 14 अक्टूबर से जुम्मा और हफ्ता रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: तहजीब और सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, जीए एफएम की आवाज।
1: जीए एफएम
3: की है सरदर, कुछ और कहना है? हाँ सिर्फ दो
4: छुट्टी होती
3: लेकिन तीन। अच्छा मतलब ज्यादा आया करूँ छुट्टी कम किया करूँ?
4: हाँ,
3: ये कहना चाहते हैं। अच्छा चले ठीक है फिर देखते हैं, बोरिया बिस्तर लाते हैं अपना यही। ठीक है ओके ओके अल्लाह हाफिज जी। सरदर्द की आवाज गुम हो गई है, गुम। 0300-01-1488। अच्छा एक और कॉलर लेंगे जी लाइन पे और चेक करेंगे लास्ट अनलकी कॉलर कौन होगा हमारे साथ।

0: तो फिर
1: हाँ वो करना चाहिए,
0: वो करना चाहिए।
1: हाँ
0: मतलब अपना नुकसान आउट ऑफ द वे जाके हम दूसरों के लिए कर दें,
1: वो काम मत करें जिसमें अपना फायदा दूसरों का नुकसान
0: हो। ये भी अच्छी
1: बात है, काम करें जिसमें अपना फायदा दूसरों का फायदा हो।
0: नहीं ये तो हो गया, अब ये बताएं जिसमें हमारा फायदा नहीं, हमारा नुकसान हो और सामने वाले का फायदा हो तो उसमें क्या किया जाए,
1: उसमें क्या किया जाए।
0: यस
1: उसमें दूसरों का फायदा बेहतर है मुझे लगता है,
0: दूसरों का फायदा बेहतर है।
1: हाँ
0: पक्की बात है।
1: हाँ पक्की बात है, सही कहते हैं।
0: चल नहीं ठीक है, बहुत जबरदस्त, इतना बड़ा दिल लेके घूम रही है आप, वाह।
1: अच्छा करवा गए भी तो सही ना।
0: ओके ओके दुआ कवल और कुछ कहना है?
1: हाँ एक बात कुछ
0: सॉरी।
1: अच्छा अगर मैं तुम्हारी पिछले शो की रिकॉर्ड सुनना चाहूँ तो मुझे कहाँ से मिलेगी?
0: क्या सुनना चाहो?
1: पिछले शो आपके कितने?
0: पिछले शो सुनना चाहो मेरे ख्याल से फेसबुक पेज पे अगर तो अवेलेबल है, अगर नहीं है मेरे ख्याल से नहीं होंगे क्योंकि हमारा पेज कुछ टाइम पहले जो है आई गेस के फ्रीज हो गया था, जिसकी वजह से जो पुरानी ऑडियो स्ट्रीमिंग्स हैं वो शायद चली गई हैं, और मे भी कुछ हो। अगर आप सर्च करेंगे ना फेसबुक के ऊपर #RJRukhsar या फिर गूगल के ऊपर ही अगर आप सर्च करेंगे ना तो आपको वहां पे मेरे शोज मिल जाएंगे। यस RJRukhsar अब्बासी या फिर RJRukhsar #Rukhsar के नाम से सर्च करेंगे फेसबुक पे गूगल पे वट एवर जहां भी करेंगे आपको वहां पे शोज मिल जाएंगे इजीली। ठीक है ओके अल्लाह हाफिज थैंक यू। और यहीं पे प्रोग्राम को खत्म करने का टाइम होता है जी, और प्रोग्राम को खत्म करेंगे।

ही गाना चली जा रहा है, चेंज करेंगे और साथ में हम लेंगे फाइनली आपसे इजाजत, मेरी आपसे चर्चा होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। दिस इज मी आरजी रुखसार, साइंस आउट, टेक केयर, गुड बाय।

0: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Dex Ointment.
4: Tez aaram, muasir hifazat aur qabil e-aitmad mayar.
3: Har acche store se naam lekar talab kijiye.

हथियारनि खे निशानो बणायो आहे। ईरान जाबे खिते में बि अॾनि ते ड्रोन ऐं मिज़ाइल हमला। ईरानी बहरीन ऐं कुर बणायो 8 ईरानी मिज़ाइल फिज़ा में तबाह करण जी तस्दीक करे छॾी। पाकिस्तान हिकु भेरो ॿीहर अमेरिका ऐं ईरान में शुरू थियल छिकताण ते ॻणती ज़ाहिर करे छॾी। धुरिन खां सह करण जो मुतालबो। मसलो ॻाल्हियुनि ज़रिए हल करण ते ज़ोर भरियो। परॾेही तर्जुमान ताहिर हुसैन चयो आहे त खिते जे मौजूदा सूरतहाल ते नज़र आहे। पाकिस्तान मसले जे हल लाइ ॻाल्हियुनि ते यकीन रखे। हाल ते कंहिं बाद मुकनामे ते आणणु घुर्जे।

अमेरिका ईरान में जमीनी फौज मोकलण ते गौर शुरू करे छड्यो। अपना हर्मुज़ भरसां ईरानी बेटन ते अमेरिकी फौजी मोकलण जो इम्कान। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट मूजिब आला सतह इजलास में सदर ट्रंप के सिफारती कोशिशन सां गड ईरान में जमीनी फौज मोकलण बाबत ब्रीफिंग डिनी वई आहे। ब्रीफिंग में सदर बेटन ते कब्जो करण समेत शदीद फौजी कार्रवाई बाबत वेही फौज हथदर

0: फकीरे नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
1: फकीर सोप
0: बारिश के लिए मुफीद है।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: झुरियों चायों कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
0: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
0: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: अभी बुधो प्यार जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज।
3: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
2: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सुनब दंदा तमाम खूबसूरत मासूमी सोने समात उनकी मुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। पुरखुली दो के समंदर चाहतों के बारे सलासल खजाल से पलतक आसे गलत दिन से रात नी से जागते तुम्हें से आसमां तक जिंदगी से मौत तक से दर्द तुमसे खुशी तक दिल से दर्द जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बल आलमीन। बिल्कुल जी आप सुन रहे हैं जी एफ एम एटी नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास नटियारी सकरन मेहरापुर माथली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल सही प्रोग्राम व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो में आप तमाम तरह सुनने वाली समातों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाए। आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारा प्रोग्राम शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं क्योंकि बहुत चाहते हैं खूबसूरतियाँ हासिल करना आजकल के दौर में कौन नहीं चाहता। तो अगर आप भी अपनी खूबसूरती को हासिल करना चाहते हैं खूबसूरतियाँ बढ़ाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर मौजूद हैं। इसी के साथ साथ अपना भी तारुफ करवाते हैं तो लिसनर्स रीजन द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर जे एंड यू डीजे सिद्रा मुस्कान तो सुनाई होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्राव के साथ मुखातिब हो चुकी है इस ब्यूटीफुल से प्रोग्राम में आप लोगों को ब्यूटीफुल

आने के लिए। तो जितने भी लोग हमारे साथ माजरी समाते हैं सबको मदीद कहा जाता है। ओके जी बिल्कुल, और साथ ही साथ जरा आप अपनी हालचाल भी बताते जाइए स्टूडियो लिसनर्स, अंत की हालत कैसे है आपकी हालत। उम्मीद हम शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुकून मूड के साथ सुकून प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपकी जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे और आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे 3 बजे तक। तो बिल्कुल 2 घंटे हमारे पास मौजूद है जनाब।

बटा मसाला बिकॉज आली रे आली सुधर आली बोस आपके होंठों पर 440 रुपए की स्माइल लाने के लिए. तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 रुपए की स्माइल लाते हैं और यहाँ पर ऐसा करते ही आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं. और जो आगे से प्रोग्राम किया जाएगा एक बहुत

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा सुंदर। उसी के साथ साथ आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तौर से। और जी आपकी सिद्रा के साथ माचो जी मेरे साथ वाणी मुझे बताते जाएंगे, अपने होने का एहसास दिलाएंगे। और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ अगर मौजूद हैं तो आप कहां कहां से हमारे साथ हैं और कौन कौन से समाते हैं, ये हमारे साथ जरा आप शेयर करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इनके बारे में भी तफसील से बताने वाले हैं। ओके जी, तो सब कुछ बताएंगे और बहुत सारी बातें हैं जो बताने वाली, लेकिन साथ साथ सबसे पहली जो बात है वो ये कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों से टॉपिक क्या पूछा जा रहा है उसकी जानिब आ जाते हैं। ओके जी, तो अगर आज के प्रोग्राम के सवाल की बात की जाए तो आज जो मेरा आप लोगों से टॉपिक होने वाला है प्रोग्राम के अंदर, तो वो कुछ इस तरह से होने वाला है जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, हम मूवीज में देखते हैं, मैंने रियल लाइफ में तो ऐसा कभी नहीं देखा कि किसी इंसान की जो ना किसी इंसान को मेमोरी लॉस हो गया हो, यानी कि उसकी याददाश्त चली गई हो, उसने सब कुछ भूल दिया, उसका मतलब जो भी उसके साथ हो वो सब कुछ भूल जा रहा हो। मैंने रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन हाँ मूवीज में हमने बहुत मार देखा है। लेकिन ऐसा है कि अगर आप जो है ना, आपने कभी किसी इंसान को देखा है जिसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, या फिर आपने भी मूवीज में देखा है, लेकिन सवाल जो है वो कुछ इसी से रिलेटेड होने वाला है आज के प्रोग्राम का, तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मेमोरी लॉस हो जाने के बाद एक इंसान सब कुछ भूल जाता है, यानी कि वो सब कुछ भूल जाता है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता।

0: तो आज आप मुझे जरा ये बताइए कि फिर वो अपनी लैंग्वेज कैसे जो है ना उसे याद रह जाती है, यानी कि बेसिकली देखा जाए तो वो तो अपनी लैंग्वेज भी भूल जाए ना, मतलब एक चीज नई से शुरू हो रही है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करी ना, फिर उसे अपनी लैंग्वेज क्यों याद रहती है, लैंग्वेज कैसे याद रह सकती है, ये आप जरा आज मुझे बताएंगे। तो जल्दी जल्दी से अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाएंगे, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे LR के सिंगल स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और इसे सेंड कर देंगे 8821 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं, फेसबुक पर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो GLR का ना FM 88.8 हमारा पेज है। ओके जी, तो फेसबुक पेज को आप जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको आराम से हमारा जो है ना वो पेज मिल जाएगा, उसके ऊपर आप जैसे ही आते हैं तो आपको हमारे प्रोग्राम वाइट एज एंड जे स्किन ब्यूटी शो की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जैसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। ओके जी, चलिए जल्दी जल्दी से पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे बताइए आप हमारे साथ मौजूद है, और साथ साथ बताइए अगर किसी इंसान की ना मेमोरी लॉस हो जाने के बाद वो सब कुछ भूल जाता है तो फिर उसे अपनी लैंग्वेज कैसे याद रहती है और क्यों याद रहती है, ये बताइए जरा मुझे। ओके जी, सो अगर आप भी हमारे साथ मौजूद हैं तो जल्दी जल्दी से अपने होने का एहसास दिलाइए, आप जिंदा है मुझे पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप वाई जे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर जे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी आप हमारे साथ शेयर करेंगे, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग होती है। और साथ ही साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, चाहे वो वाई जे ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर जे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, तो उसके लिए आपने जो है ना वो डायल करना है 03-15-799-0595 3015-79-5595। ये नंबर उन लोगों के लिए है जो भाई ये कह रहे हैं कि भाजी हमारे एरिया में तो नहीं मिल रही वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट और हमारी एरिया में तो नहीं मिल रही डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट, तो आप जो है ना इस नंबर के ऊपर रابطہ कीजिए, आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर भी वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे, तो जल्दी से अवेलेबल कराइए और नंबर के ऊपर رابطہ करते रहिए। ओके जी, जल्दी से हमारी पोस्ट को भी लाइक और शेयर करते जाइए, दोस्तों को मेंशन कीजिए और उन्हें जरा पोस्ट शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता चले कि खूबसूरतियां आपको कैसे मिलने वाली है। आजकल देखा जाए तो हर कोई जो है ना वो परेशान है खूबसूरती को लेकर, लेकिन आपकी ये परेशानियां हम दूर कर देते हैं। तो बिल्कुल जी, मोहम्मद मीरन जकरानी भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं जेकब आवाज से, खुश आमदीद कहते हैं भाई जान को। सरफराज अली सोलंगी हमारे साथ मौजूद है, सरफराज सोलंगी आपको भी वेलकम करते हैं, दर्द दिल आ चुकी है, हेलो, और कहते हैं चलो चंद आ गई, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, स्वीटी को वेलकम करते हैं, और फहीम शेख कहती है अस्सलाम वालेकुम, वलैल सलाम अदर, खुश आयो, सफा चाक चंगा भला, जी जी सबको आयो चाक चंगा भला, ता बुधाए की आयो, कहती है जो गानो बुधाए जो भला, बिल्कुल तो आपके गानो बुधराइनासी। और हिदायतुल्ला अहमद आने कहती है अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो, मैं आज गया हूँ, मैं अच गया हूँ, ओके जी, बिल्कुल आज फ्री होकर क्योंकि संडे है तो आज ये सॉन्ग सुनाना साहिर अली बग्गा का पश्तो, चलें चलें बिल्कुल सबकी फरमाइशें लगाएंगे, और लेकिन गाने अच्छे अच्छे वाले बोलिएगा। और उसके अलावा दिलावर खान हमारे साथ ही, बहुत शुक्रिया, वासा भाई आ चुके हैं, हेलो वासा भाई, छाला ताने खुश आयो। ओके जी, यासीन खंड भी हमारे साथ मौजूद कहते हैं शिकारपुर से नियाज भुट्टो शो सुन रहे हैं, वेरी नाइस सॉन्ग, शमन अली मीराली का सुनाइएगा, बिल्कुल सुनाएंगे आपको। और मोहम्मद जमान आ चुके हैं, वेलकम टू द शो, स्वीट बुआ जी आपको भी खुशियां मदीद करते हैं। और आबिद नौशीरो से हमारे साथ ही जी, फिरोज अली ब्रोही भी हमारे साथ ही, खुश आमदीद करते हैं भाइयों को। मिदड़ी आ चुकी है, वालेकुम अस्सलाम प्यारी, बिल्कुल ठीक ठाक है, आप बताएं आप कैसी हैं, ठीक ठाक। और उसके अलावा दर्द दिल कहती है कि जिंदगी के कुछ सवालों के जवाब दलील से नहीं वक्त से मिलते हैं, वक्त खामोश रहकर भी सब कुछ वाजे कर देता है, कौन मुखलिस था, कौन मतलबी, कौन नेमत बना और कौन सिर्फ एक आजमाइश, वक्त का इंसाफ सबसे मुनफरिद होता है, ना उसे गवाहों की जरूरत होती है ना दलीलों की, इंसान को उसके अमाल के मुताबिक जवाब दे देता है और उसी में असल हकीकत आश्कार हो जाती है। क्या बात है जी, बहुत बेहतरीन, और आपको खुश आमदीद करते हैं जी, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम सुन रहे हैं वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो। और इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों से जो सवाल पूछ रहा है तो वो जरा दोबारा से रिपीट करते हैं, और सवाल मैंने आज आप लोगों से पूछा है कि आप मुझे बताएं, अगर एक इंसान की याददाश्त चली जाती है, एक इंसान की मेमोरी लॉस हो जाती है, उसके बाद इंसान सब कुछ भूल जाता है, ये तो आपने सुना ही होगा, देखा ही होगा, तो आप मुझे ये बताइए तो उसे फिर अपनी जबान कैसे याद रह जाती है? वो भी देखा जाए तो उसे भूल देनी चाहिए थी, क्योंकि सब कुछ भूल जाता है तो जबान भी भूल देनी चाहिए। तो मुझे बताएं ये क्या सीरे पे, ये क्या मैटर है, इसके ऊपर आप क्या कहने वाले हैं, जल्दी से बताइए। शामले प्रोग्राम होते जाइए और हमारी पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए। टाइम हुआ चाहता है जी शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाते हैं, उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास आते हैं, तो सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स। एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाते रहिए और खूबसूरतियाँ हासिल करते रहिए।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उदंदा रहो, उदंदा रहो।
2: It's 1:30 PM. This time check is brought to you by
3: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram, ai roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
4: क्या आप आसाबी दर्द, जोड़ों की तकलीफ,
5: कमर दर्द या पट्ठों की सूजन से परेशान हैं?
4: अब दर्द को कहें अलविदा
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट के साथ।
4: जी हाँ,
5: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश
4: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
5: ये ऑइंटमेंट
4: मुतासरा जगह पर आसानी से जज्ब होकर
5: दर्द, सोजिश
4: और अकड़न से आराम पहुँचाने में मदद देता है।
5: आसाबी दर्द, जोड़ों का दर्द,
4: गर्दन और कमर की तकलीफ,
5: पट्ठों के खिंचाव, मोच,
4: चोट, पुराने जख्मों के दर्द
5: और जल्दी जलन में मुफीद।
4: मुतासरा जगह पर दिन में 2 से 3 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
5: फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट,
4: तेज आराम, मुआसर हिफाजत और काबले एतमाद मयार।
5: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
6: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: एलोवेरा फैन
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अपना शहर, अपना घर, मटियारी और मटियारी की आवाज़
3: GFM 91.6।

वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास. आप सुन रहे हैं जी एफएम 88 नेटवर्क. हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मादली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपके सिद्रा आपके साथ मौजूद है. मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं. शामिल प्रोग्राम होना चाहते हैं तो क्या करेंगे जी अपना जो है ना. आप हमें एक तो 8881 पर मैसेज कर सकते हैं, दूसरा आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं. ठीक है, कॉमेंट करते रहिए और हमारे फेसबुक पेज को जो है ना वो फॉलो कीजिए. उसके बाद पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए. ओके हो गया जी. बिल्कुल, तो ये प्रोग्राम आप लोगों तक नशर किया जा रहा है वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. तो वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताते हैं कि आप क्यों इस्तेमाल करेंगे जनाब. क्योंकि भाई प्रोडक्ट तो आप जानते हैं कि क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं और ये कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं ये भी जानते हैं, लेकिन आप क्यों इन्हें इस्तेमाल करेंगे ये जानना आप लोगों के लिए जरूरी बात हो जाती है. तो बिल्कुल आपको बताते हैं कि अगर आप वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स को या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करके अपनी खूबसूरती को कैसे जो है ना वो बढ़ा सकते हैं. तो खूबसूरती को बढ़ाना आजकल के दौर में भाई बहुत आसान काम हो चुका है, क्योंकि इतने मजे मजे के प्रोडक्ट्स, इतने शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट जब मार्केट में अवेलेबल है तो आपकी तो चांदी ही चांदी है भाई. सोना महंगा है ना इसलिए. ओके जी, तो आपको गोरा चिट्टा बनाने का काम करेंगे जी वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स. और इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा बातें हैं जो कि आप लोगों को बताएंगे, लेकिन जरा टॉपिक रिपीट करते हैं उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता कि आज के प्रोग्राम में टॉपिक क्या पूछा गया है. तो आज मैंने आप लोगों से सवाल पूछ लिया कि आप मुझे बताएं, आपने बहुत बार देखा होगा मूवीज में ड्रामों में हर जगह आपको ये पता है कि एक इंसान की याददाश्त चली जाती है. ठीक है, मेमोरी लॉस का तो आप लोगों को पता ही होगा. तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मेमोरी लॉस हो जाने के बाद एक इंसान सब कुछ भूल जाता है, ठीक है, तो उसे अपनी जबान कैसे याद रह जाती है. ये तो एक मतलब वो बात हो गई ना कि भाई हमें वो बचपन से पागल बनाते आ रहे हैं कि मैं तो इंसान देखा जाए पैसे के लिए सारी चीजें उसको भूल जानी चाहिए, लेकिन वो अपनी जुबान कैसे याद रखता है ये जरा लॉजिक समझ नहीं आ रहा. तो इसको जरा ये डाउट है इसको क्लियर कीजिए और साथ बताइए जल्दी से कि आपका इसके ऊपर क्या जवाब होने वाला है. और इसी के साथ साथ आप हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, जल्दी से बताइए कौन कौन हमारे साथ और कहां कहां से आप हमें ज्वाइन करते जा रहे हैं. उसके अलावा अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर वाइटेज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल कराना चाहते हैं तो उसके लिए आप डायल करते रहिए 03-15-799-0595 बुरी 315-79-595. ठीक हो गया. ओके जी, हमारे साथ यहाँ पर किशोर भाई आ चुके हैं. वालेकुम अस्सलाम. और हिदायतुल्लाह कहते हैं कि वैसे दिमाग क्या दिमाग गया नहीं, तो देखा जाए तो ये चीज थोड़ी सी सोचने वाली ना कि अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों है. निदड़ी कहती है ठीक नहीं थी, ठीक हो गई अब क्या बात है जी, बहुत शुक्रिया. और फहीम कहते हैं टॉपिक मेरे ख्याल से वो अपनी जबान भी भूल के बातें सिखाई जाती हैं. अच्छा, ऐसा मैंने तो कभी नहीं देखा. और इकबाल आचार्य हमारे साथ विलेज सोनो खान आचार्य मीरपुर खास से सुन रहे हैं, भाई को वेलकम करते हैं. और यासीन कहते हैं लगता है आज आपका मूड सही है जी. बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह. और हिदायतुल्लाह कहते हैं डिप्रेशन. और उसके अलावा सरफराज अली कहते हैं हमें जवाब नहीं आ रहा, हमको नहीं पता. और किशोर भाई कहते हैं टॉपिक ये तो जब मेरी मेमोरी लॉस होगी तभी पता चलेगा. नहीं, आपने जो इतनी मूवीज इतने ड्रामे देखे हैं तो बताएं ना क्या सिखा. हाफिज यूनिस बाबर हमारे

तो अगर आप भी व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है, अगर आप नाइट क्रीम लगाना पसंद करते हैं तो व्हाइट एज की ब्यूटी क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप नाइट क्रीम में नहीं लगा पाते हैं, आप लोगों की स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव है लेकिन आपको फेयरनेस फार्मूला चाहिए, फेयरनेस क्रीम चाहिए, तो आप व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और व्हाइट एज लवली क्रीम जो कि फेयरनेस फार्मूला है जिसे हर एक इंसान लगा सकता है, दुनिया में जितने सारे लोग हैं वो सारे लोग व्हाइट एज लवली क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो व्हाइट एज लवली क्रीम जो है ना, वो उसे तैयार इस तरह से किया गया है कि भाई इसे हर कोई इंसान जो है वो लगा सकता है, चाहे आप बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, टीनेजर्स हैं, लड़के लड़कियां, अंकल आंटियां सभी इस्तेमाल करेंगे। घर का एक एक इंसान व्हाइट एज लवली क्रीम को लगा सकता है क्योंकि जनाब ये रेडियंट अल्ट्रा वाइटमिन का फार्मूला है। 30 वाइटमिन कैप्सूल इसके अंदर एड किए गए हैं और मजे की बात है इसके अंदर सनस्क्रीन भी एड की गई है। ऐसा नहीं कि अब हम ये जो स्ट्रगल था मेरी लाइफ का ये मुझे ही पता है कि भाई मैंने कितनी बार कोशिश करा कि भाई मुझे मेरे टाइप का जो ना स्किन टाइप का सन ब्लॉक मिल जाए, लेकिन कभी मिलता ही नहीं था। और ये जो चीज है हमारे पास, अगर बनी बनाई चीज एक मिल जाए हमें जिससे बस हमने सिर्फ फायदा उठाना है, तो आपके पास व्हाइट एज लवली क्रीम आ जाती है जिसके अंदर आपको सन ब्लॉक की क्वालिटीज भी मिल रही हैं। क्या बात है, बहुत बेहतरीन। और आप इस्तेमाल करेंगे इसे किस तरह, जैसे आप कोई भी फेयरनेस क्रीम लगाते हैं सुबह लगाएं जब आप किसी काम से जाएं, कोई काम है या आपका कोई जॉब करते हैं, तो आपने बस अपना फेस वॉश करना है और व्हाइट एज लवली क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर देनी है। उसके अलावा अगर आपके चेहरे पर एक नहीं प्रॉब्लम काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, आप टीनेजर हैं तो टीनेजर्स की स्किन पे जो ना काफी ज्यादा एक्नीज आ जाते हैं, तो एक्नीज को अगर आप खत्म करना चाहते हैं तो आपके पास डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब मौजूद है। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है ये फुल आयुर्वेदिक फार्मूला है, यानी कि इसे जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है और ये आके एक्नीज को तो खत्म करेगा ही करेगा, लेकिन उसके साथ साथ इसके और भी बहुत ज्यादा वाले फायदे हैं, जैसे कि आपके चेहरे पर जो एक्नी के निशानात है वो खत्म हो जाते हैं। आपके चेहरे पर अगर बहुत ज्यादा निशानात हैं या फिर जैसे आंखों के हल्के हैं या फिर रिंकल्स आ चुके हैं या फिर कोई चोट का निशान है, कोई जलने का निशान है, इस तरह के कोई भी निशानात अगर आपकी स्किन के ऊपर मौजूद है और आप उन्हें रिमूव करना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करके उन्हें जो है ना वो रिमूव कर सकते हैं। लगाने के तरीकेकार भी बिल्कुल आसान है, जैसे आप जो है ना अपना फेस वॉश करते हैं, और हाँ डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब जो है ना इसे आप दिन में भी लगाएंगे और रात में भी लगाएंगे, यानी कि आप सुबह में भी लगाइए और रात में भी लगाइए। जब आप सुबह उठें तो आप लगा लीजिए और जब आप सोने लगें तब भी आप लगा लीजिए, लेकिन लगाने से पहले अपना ना फेस वॉश लाजमी किया करें। उसके अलावा अगर आप कोई अच्छा सा साबुन ढूंढ रहे हैं, तलाश है अच्छे से साबुन की, तो आपके पास व्हाइट एज ब्यूटी सोप मौजूद है। और व्हाइट एज ब्यूटी सोप जो है आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाइट एज का ब्यूटी सोप जिसके अंदर एवोकाडो है, एलोवेरा है और मिल्क है। उसके अलावा अगर आप चलें सोप नहीं लगाते हैं, आप फेस वॉश लगाने वाले इंसान हैं, तो आपके पास व्हाइट एज का जो है ना फेस वॉश भी मौजूद है। ओके जी, तो व्हाइट एज का फेस वॉश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि विटामिन सी से तैयार किया गया है, जो कि आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है, एंटी एजिंग के लिए है। और उसके अलावा इसके अंदर विटामिन ई भी मौजूद है। और मजे की बात बताऊं तो जनाब विटामिन सी वाला जो ये व्हाइट एज का फेस वॉश है ना, ये इतना क्रीमी फेस वॉश है कि जब आप इसे लगाएंगे तो आप कहेंगे आए हाय मजे ही आ गए। तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए व्हाइट एज का फेस वॉश या फिर सोप, जो भी आपको ईजी लगता है, जो भी चीज आप लगाना पसंद करते हैं, बस लगाते जाइए, अपनी खूबसूरती को बढ़ाते जाइए, हमेशा के लिए टिप टॉप बनी रहिए और साथ साथ डायल करती रहिए 03-15-799-0595। बुड़ी टे 15-79-5595 ही नंबर आए जो तमाम आसानी से लाया है। अगर तुम पाँच करीबी जनरल स्टोर से व्हाइट एज तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल कराने चाहो था तो नंबर व्हाइट एज अवेलेबल थी वेदा, सो अवेलेबल करायो आसानी पैदा करो, समझो तो पाँच लाइ भी पाँच आसपास के मानन के लिए भी। ओके सो व्हाइट एज एतर गाल इस्तेमाल करना तो खबर पेजी वी तुधाइंदा भी रहंदी। और विलेज से गुलाम कासिम सोलंगी, फ्राम हिंगूरजा से दिलावर हुसैन सोलंगी, बाजी सदराब कैसी है और शेला गुल का गाना सुनाइएगा और कहते हैं 8 दिन हो चुके हैं आज मुझे मुझ पर नहीं आज लास्ट टाइम आपका गाना मैंने चलाया था कुछ शायद 1-2 दिन हुए और चले मैं कोशिश करूंगी आज जो आपने गाने की फरमाइश करी लगाएंगे। डेडिकेशन आपकी जा रही है किसको?
نذیر سولنگی, آصف سولنگی, سلیم اینڈ طیب سولنگی کے نام. چلے جی, بہت شکریہ ہو گیا آپ کا. اور فہد ڈیری ہے سعود ڈیری فرام نواب شاہ سلام ادی شو نائس ہے تمام جو محبتوں پیارے بھاج. اور ہمارے ساتھ ہے جی پرنس احمد علی رند فرام احمد عباس, وعلیکم السلام کہتے ہیں سلام پاک آرمی سویٹ شو. پلیز دیبا سحر کا کوئی بھی سانگ اپنی پسند کا پلے کیجیے گا. اوکے ڈن. اور ہمارے ساتھ ہیں جی یہ دادو خان حیدری فاروق.

अच्छा अच्छा था जो अदा जी वापस दुनिया में आई थी तुझी जुबान केड़ी हुई मुझी जुबान त हुई पर मां कुछ गालाईंदी कोन हुयो मुझे एतरो एटीट्यूड हुयो मां बिन सालन ताई किसा गालो ही कोन हुयो हाणी त घटि ॻाल्हाईंदी आहे पर ॿिनि सालनि ताईं कंहिंसां ॻाल्हायो ई कोन हुयो ॾिसो त लही छोकिरीअ जी अच्छा मिठो सुमरो वारे साथ मिस्त्री जी फ्रॉम खानपुर महर से शो सुन रहा हूँ प्रोग्राम लश्कर से है और इंजॉय कर रही आपकी आवाज को प्लीज फायजा अली का गाना सुनेगा दोस्त मुमताज अली सुमरो इन फराज अली सुमरो सजाद अली सुमरो के नाम चले मैं बिल्कुल आपकी फरमाइश का गाना लगा दूंगी और मोहम्मद अली खोसो हमारे साथ हैं वालेकुम अस्सलाम हैदराबाद अच्छा हैदराबाद से आप हमारे शो सुन रहे हैं आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है उसके लिए बहुत शुक्रिया आपको वेलकम करते हैं ओके जी महामान जमान लगते हैं।

मुसलमान कह सकते हैं शायद ऐसा हो सकता है। नहीं रोशनी नहीं इसे आग अभी तक बाबा। अच्छा सरफराज अली सोलंगी भाई हेलो हो गया जी आपका के शमन मिराली का गाना सुन जी जी मैं लगाने की और उसके अलावा ये तो नहीं बोले थोड़ा ऑफ सा लगा दिया और ये चापे की याददाश्त चली जाती है जुबान तो वैसी की वैसी मुंह भी ठीक ही हुई ना जुबान का तो नहीं ना जब सारी बातें सारी चीजें इंसान भूल जाता है तो उसे जुबान कैसे याद रहती है ये भी तो है ना कि वो सडनली ऐसा हो जाए कि इंग्लिश बोलने लग जाए कि भाई क्या पता मैं इंग्लिश वाला बंदा हूँ ऐसा कैसे हो सकता है कि जब एक इंसान सब कुछ भूल जाए उसे कुछ भी याद ना हो लेकिन वो अपनी जुबान बखूबी भूल जाता है तो ये जरा थोड़ी बात जो है ना वो हजम नहीं हो पाती बताइए जरा आप क्या कहेंगे इसके ऊपर और साथ साथ अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल भी करें तो कौन सा प्रोडक्ट लगा रहे हैं ये भी हमारे साथ शेयर कीजिए ऐसा ना हो कि बातों बातों में आप ये चीज भूल ही जाएंगे भाई व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाने हैं और हमने कौन सा प्रोडक्ट लगाना है ये भी बताइए जल्दी से अच्छा फहीम ये कौन सी मूवी देखी भाई मुझे जरूर बताइएगा मैं देखना चाहूंगी और ये हमारे साथ हैं जी निधि कहती मेरी तबीयत ठीक नहीं इसीलिए कुछ भी बोल जाऊं तो इग्नोर कर देना अच्छा किशोर भाई कहते हैं कि हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे भाभी के साथ पक्की वाली दोस्ती बना लेते हैं समझ रहे हैं और ये जी एम अंसारी कहते हैं जापिक पड़ी में आमिर खान ने दिखाया लोग कैसे भुलक्कड़ बनते हैं फिर पीके में बताया कि जुबान सीखने के लिए किसका हाथ पकड़ के पूरी भाषा खुद में डाउनलोड कर देता है अयो रे अयो अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उस तक पहुंचने का पूछ सकूं दया क्या गन चक्कर है अगर उसने बताया तो यू को भी बता दूंगा चलें ठीक है मैं वेट कर रही हूं आप मुझे जरूर बताइएगा और दर्दी दिल कहती है कि जो शख्स आपको नीचा दिखाना चाहता है वो तस्लीम कर चुका है कि आप उसका मकाम नहीं आपका मकाम उससे ऊंचा है बिल्कुल जी ऐसा ही होता है यासीन कहते हैं कि व्हाइट एज का सोप लेकर आया हूँ क्या बात है जी क्या बात है इस्तेमाल कीजिएगा और व्हाइट एज की जो लवली क्रीम है ना वो भी आप ट्राई करके देखिए वो बहुत अच्छी है आपके घर में सभी को पसंद आ जाएगी आपके घर में खवातीन जितनी भी है ना वो कहेंगी भाई ये आप दूसरी लेकर आए ये हमें दे दें बस तो आप लाजमी जो है ना व्हाइट एज की लवली क्रीम जो है ना वो ट्राई करके देखिएगा

0: हाउ हाउ मुझे याद आने न्यूज ब्रेक जो टाइम थे ना को शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आए तमा गाड़े न वंजो इदे बैठा हो जो मैं ओही मनी ओही मोटा थी सो स्टे ट्यून स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइट एज एंड दी स्किन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड दी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हनो था कौन बतायो तो सही खबर तो पवे सोना थे आयो या कौन
1: अपना शहर अपना घर मठियारी और मठियारी की आवाज
2: GFM 91.6
3: It's 2 PM. This time check is brought to you by
4: फकीरी एनर्जेसिक क्रीम दर्द सोजन वरम फौरी खत्म आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें
5: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर
6: कबे ते हमला जारी अमेरिकी फौज जा ईरान जे मुख्तलिफ शहरन ते फिजाई हमला ईरानी शहर सेमलान में हवाई अड्डे के भी निशानो बनायो वयो सेनेट काम मूजिब अमेरिकी फौज अपना हरमुज में खतरो बणजंदड़ ईरानी सलाहतन के निशानो बनायो आहे ईरान जाबे खिते में मौजूद अमेरिकी अड्डन ते ड्रोन ए मिसाइल हमला ईरानी फौज उर्दन बहरीन ए कुवैत में मौजूद अमेरिकी फिजाई अड्डन के निशानो बनायो उर्दन 8 ईरानी मिसाइल फिजा में तबाह करण की तस्दीक करे छी पाकिस्तान एक भेरो बीहर अमेरिका ईरान में शुरू थियल चिकटाण ते गणती जाहिर करे छी धुरिन खां सह

पुर जो मुज़ाहिरो करण जो मुतालबो मसलो गालिन ज़रिए हल करण ते ज़ोर परडे तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी चयो आहे त खिते जी मौजूदा सूरतहाल ते नज़र आहे पाकिस्तान मसले जे हल लाइ गालिन ते यकीन रखे थो तकरार कंहिंजे बि मुफ़ाद में नाहे पाकिस्तान अमुन कोशिशनि तां हथ नाहे खयो इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त नामे ते अमल जारी रहण घुर्जे अमेरिका ईरान में ज़मीनी फ़ौज मोकिलण ते गौर शुरू करे छडि॒यो अमेरिका हरमुज भरिसां ईरानी बेटनि ते अमेरिकी फ़ौज जे मोकिलण जो इम्कान अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जे रिपोर्ट मूजिब आला सतह इजलास में सदर ट्रम्प खे सिफारती कोशिशन सां गॾु ईरान में ज़मीनी फ़ौज मोकिलण बाबति ब्रीफिंग डि॒नी वई आहे ब्रीफिंग में सदर ट्रम्प खे ईरानी बेटनि ते कब्ज़ो करण समेत शदीद फ़ौजी कार्रवाइयुनि बाबति बि ब्रीफिंग डि॒नी वई आहे ज़मीनी फ़ौज मोकिलण बाबति हतमी फ़ैसिलो सदर ट्रम्प कंदो नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार हिकु ॾींहं जे दौरे ते चीन रवानो इसहाक़ डार शंघाई में चीनी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल थींदी वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां कणक ज़खीरो ऐं अटो महांगो कंदड़नि ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जी हिदायत सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि खुराक खाते बाबति इजलास सूबे मां 6,10,000 मैट्रिक टन कणक गुम हुजण जी तसदीक अमलदारनि पारां गुम थियल कणक मां 1,72,000 मैट्रिक टन कणक हथ करण जी दावा खुराक खाते पारां कणक जी खोट पूरी करण लाइ पास्को खां वधीक कणक ख़रीद करण जी तजवीज़ वॾे वज़ीर चयो त ग़िज़ाई खोट पूरी करण लाइ हर मुमकिन क़दम खणंदासीं

0: सिंध जे सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण मौलाना फजल रहमान खां शहीदन बाबति बयान वापस वठण जो मुतालबो करे छॾियो। शर्जील इनाम मेमण चयो त मौलाना फजल रहमान शहीदन बाबति ॾिनल बयान घट न थींदी। मौलाना फजल रहमान मामले खे अनाजो मसलो न बणाए शहीदन ऐं गाज़ियुनि बाबति बयान जे सख़्त लफ़्ज़नि में मज़म्मत करियूं था। शहीद पाकिस्तान जो असासो ऐं असांजो फ़ख्रु आहिनि। बयानबाज़ीअ सां शहीदनि जे रुतबे खे को बि नुक़सान नथो पहुचे। सिंध में पाणीअ जे खोट ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज, मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। नंदू में हारिन ऐं आबादगारनि प्रेस क्लब अॻियां भुख हड़ताल कई। ठिकराटो में महर माइनर जे आबादगारनि पाणीअ खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। अठहठि मोरीअ जे आबादगारनि जाम लगारी शाख में पाणीअ खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। पोछड़ ताईं पाणी पहुचाइण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है। सुनते रहो GAFM 91.6।
3: क्या आप जोड़ों के दर्द, पट्ठों के खिंचाव, कमर दर्द या सूजन से परेशान हैं?
4: फकीरी मरहम बनाने वालों की फखरिया पेशकश। फकीरी एनर्जेसिक क्रीम,
3: कुदरती अज्जा से तैयार करदा
4: ये मासर क्रीम मुतासरा जगह पर तेजी से जज्ब होकर
3: दर्द और सोजिश से आराम पहुंचाती है।
4: रोजमर्रा के जिस्मानी दर्द,
3: वर्जिश के बाद होने वाली तकलीफ,
4: गर्दन और कंधों के दर्द
3: और पट्ठों की अकड़न के लिए बेहतरीन इंतखाब।
4: सिर्फ मुतासरा जगह पर दिन में 3 से 4 मर्तबा नरमी से लगाएं और सुकून का एहसास पाएं।
3: उम्रा और हज पर जाने वाले हजरात फकीरी एनल्जेसिक क्रीम को अपने हमरा रखें।
4: फकीरी एनल्जेसिक क्रीम, दर्द, सूजन, वर्म फौरी खत्म। आज ही करीबी स्टोर से नाम लेकर तलब करें।

0: अभी बुधोपिया जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज
1: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
0: सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: Mehran ki sakafat se gunda hua. Awaaz ki door se banda hua.
4: GFM 88 Network. सिंध की आवाज़
5: बिल्कुल जी वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो में आप तमाम लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बतों समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। ओके तो हम प्रोग्राम के दूसरे घंटे में मुखातिब हो चुके हैं। जिन लोगों ने अभी अभी सुना स्टार्ट किया स्टार्टिंग से लेकर हमारे साथ मौजूद है सभी को वेलकम एंड खुश आमदीद। ओके जी स्वागत करते हैं आपका और इसी के साथ साथ मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछा है जरा वो भी रिपीट करते हैं दोबारा से, ठीक है। जिन लोगों को नहीं पता जिन्होंने नहीं सुना तो वो भी सुन ले ताकि वो भी जवाब दे सके, ठीक है। तो आज मैंने जो आप लोगों से सवाल पूछा है टॉपिक के प्रोग्राम का वो कुछ इस तरह है कि आप मुझे बताएंगे कि अगर एक इंसान की याददाश्त चली जाती है, अगर मेमोरी लॉस हो जाने के बाद उस इंसान को सब कुछ भूल जाता है, वो सारी चीजें भूल जाता है जो भी उसकी लाइफ में हुआ, वो कौन है, वो कहाँ रहता था, उसको कुछ नहीं होता पता। समझ रहे हैं आपने तो ये चीज बिल्कुल नोटिस करी होगी। तो आप मुझे ये बताइए कि जब एक इंसान याददाश्त जाने के बाद सब कुछ भूल जाता है तो उसे अपनी जबान कैसे याद रह जाती है। यस ये चीज है जो हमने पता लगानी है। दया को भी पीछे छोड़ते हैं इस बात के कि भाई पता लगाएगी क्या माजरा है। जल्दी से बताइए आपका इसके ऊपर क्या कहना है और अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम सुन रहे हैं तो 8881 पर आप हमें ज्वाइन करेंगे और इसके अलावा आप हमें जो है ना वो फेसबुक पर कॉमेंट करते जा रहे हैं, फेसबुक पर ज्वाइन कर रहे हैं और उसके अलावा आज हम आप लोगों की कॉल्स भी लेने वाले हैं। तो कॉलिंग नंबर अगर देखा जाए तो कॉलिंग नंबर आप लोगों को बताते हैं कॉलिंग 3221 3। लोगों को बता देती हूँ क्योंकि पहले आप लोगों को व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में बताया तो अभी डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बताते हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तो उसका इस्तेमाल आपकी खूबसूरती को कैसे बढ़ाने वाला है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम सबसे पहली बात तो ये है कि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है ये डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया हुआ प्रोडक्ट है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव है, हम नॉर्मल से प्रोडक्ट नहीं लगा पाते हैं, तो जनाब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों की स्किन के मुताबिक है, सेंसिटिव टाइप के लिए भी है और इसके अंदर वाइटामिन ई बीड्स हैं, माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन है जो कि भाई पाकिस्तान में 2-3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि वाइटामिन ई बीड्स से तैयार किए गए हैं तो उन्हीं में डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी आती है। बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का ये प्रोडक्ट आपको लगेगा जो कि वाकई है और बहुत ही बेहतरीन सी इसकी क्वालिटी है। अगर देखा जाए तो पैकेजिंग के हिसाब से बात करें तो पैकेजिंग भी बहुत मस्त है जनाब। आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप वाकई कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लगे हैं। ओके जी इसी के साथ साथ डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है अगर आप इस्तेमाल करती तो आपको 2 रातों में जो है वो रिजल्ट देना स्टार्ट कर देती है। तो अगर आप 2 रातें लगाना चाहते हैं, 2 रातें आप लगाने वाले हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों को बहुत अच्छे वाले रिजल्ट देना शुरू कर देगी। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप करें और आपकी खूबसूरती जो है वो बढ़ती जाएगी क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम आपकी खूबसूरती की हिफाजत के लिए तैयार की गई है। एक मयारी ब्यूटी क्रीम है, ये जल्द को नमी फराहम करती है, चेहरे को नरम मुलायम और ताजा रखने में मदद देती है। इसका बाकायदा इस्तेमाल आपकी जल्द की जो पेड़ों की वो कम कर देता है और चेहरा ज्यादा साफ रोशन और दिलकश बन जाता है। तो आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि इसके अंदर जो है वो जितनी भी चीजें ऐड की गई हैं वो बहुत ही शानदार हैं, बहुत ही बेस्ट है। तो आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम जरूर लगाइएगा और साथ में डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल

कीजिएगा। क्योंकि जनाब डी स्किन का जो फेस वॉश है ना, ये भी बहुत ही कमाल की चीज है। तो डी स्किन फेस वॉश जो कि हाइलुरोनिक एसिड सीरम से तैयार किया गया है, जो क्या की स्किन को क्लीन करता है, मॉइस्चराइज करता है और उसके अलावा हाइड्रेट भी।

0: ओके जी, तो डी स्किन का फेस वॉश अब मार्केट में अवेलेबल हो चुका है। आप कहीं इसके प्रोडक्ट्स नहीं, आप ट्राई करके देखिएगा, आपको मजे आ जाएंगे जी। ऐसा फील होगा कि आप कोई बहुत ही प्रोडक्ट इस्तेमाल कर, लेकिन ये मुनासिब सी कीमतों में आपको मिल रहा है। तो लास्ट में ट्राई करके कॉलिंग वाला सेगमेंट है वो जरा हम स्टार्ट करते हैं। कॉलिंग सेगमेंट में आप लोग हमें जो है ना वो ज्वाइन करते जाएंगे, और इसके अलावा हम ज्यादा से ज्यादा कॉल्स भी करेंगे। और इसके अलावा आप भी कॉल करना चाहते हैं तो कॉलिंग नंबर है 0332। तो फर्स्ट कॉलर की जाने बातें देखें कौन हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: के रसन सगड़ा?
1: अलीजा।
0: अलीजा माशाल्लाह पहली कॉल ये जो अलीजा जी लगी भैया, सो लकी।
1: बस लकी लगे ना।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह सुठी गाल आज, मतलब शुरुआती छोकरी जी कॉल सा थी, मतलब लगे तो लाइन छोकरी जो कॉल ही हुई। ओके अलीजा, बुधायो छाला ताने खुश आयो।
1: जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मां ठीक कया तो बुधायो ठीक है सुगरा।
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आया। प्रोग्राम बुधो पिया?
1: जी जी रोजाना बुधना आयो।
0: टॉपिक थी अलीजा छा चवंदी?
1: टॉपिक तो कुछ नहीं चवामा।
0: चो भला
1: खबर ना दिमाग में कौन घुसी है गल।
0: चलो मुझे ये बुधायो तो तुम केड़ो प्रोडक्ट लगायो पया?
1: अया कौन लगायो?
0: कौन अवेलेबल थे या
1: अवेलेबल थी वही ना, छो तो गर्मी ज्यादा है। बुधन पे उनके सलाम निदा बुधेती।
0: जी जी
1: गानो बुधराजो
0: केड़ू
1: निदा केड़ो बुधराय गानो
0: निदा के नहीं सो केड़ो बुधंदी। सही ना, ठीक है। थैंक यू सो मच अलीजा, तुम प्रोग्राम में लगन अलीजा संगाल है। ओके सो तुम भी कॉल कर सको, कॉलिंग नंबर है 0332132288। नेक्स्ट कॉल है डिसू केड़ा सगर मौजूद है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम बाजी।
0: केड़ो भाषा से गडा?
2: आरो मसा अयाज अली भट्टो।
0: अयाज अली भट्टो किथा कॉल किया?
2: लाड़काणी का।
0: लाड़काणी का अयाज दा खुश आयो?
2: हेलो बेटा ता कुछ लगा तो केड़ा
0: जी में मजे में। प्रोग्राम दो पे अयाज दा। हाँ केड़ी बूटी क्रीम ता लगायो?
2: रोज बदलना भाजी चौका था।
0: वाह वाह वाह वाह, केड़ी क्रीम हणी डिठी अव? नालो अस
2: नालो
0: ये न तो तुम दुकान वो मानू खिचो डी स्किन जो तो डी डी डॉक्टर माई जो फोटो अस न? जी जी जी जी बिल्कुल बुधायूं था। जी जी ओके थैंक यू सो मच अयाज भा, तुम मोहब्बत तुम प्रोग्राम में कॉल कई। ओके जी कॉलिंग नंबर 0332132288। आप सुन रहे हैं जी व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी, व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन पर। देखते हैं कौन कॉलर हमारे। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह के रस सगड़ा मोरो वारा लिसनर माशाल्लाह इला एक्टिव आए ने ये न साबित करा लेते तमाम जो केड़ो जवाब आ। चलो तो कोई प्रोडक्ट लगाए तो जी बुधाया थी
1: जी लवली स्क्रीन इंजीनियर बस आज खा थी पर मैं करदा थी वरी ता के बुधाइंदा थी जी।
0: चलो चलो ठीक है, बुधाए जो केड़न दोसन की याद कंदा चलो ममताज मलाई हलाई
1: कलाम हलाइजो इहो इंतज़ार
0: ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे। थैंक यू सो मच प्यारा भाउ प्रोग्राम में कॉल कई, तव्हांजो मोहबतूं आहिनि, तव्हां शौक़ सां प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो जंहिंजो नालो आहे व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो। अच्छा मूं छंछर ते कॉल न वरती हुई, न शायद छंछर ते न वरती हुई, खमस ते बि न वरती हुई, सो अॼु त वठणी हुई न, मूंखे कुटकी थोरी खाइणी सम्झो था नी। सो मतिलब ईअं आहे त ॻाल्हियूं लास्ट में वठणियूं हूंदियूं आहिनि। सो कॉलिंग नंबर 0332132288। नेक्स्ट कॉल ॾिसूं था केरु असां सां कॉलर मार। वालेकुम अस्सलाम। सुञाणे वञा थी ईअं न, दुआ छा ख़ुशि आयो? भला मज़ो न।

0: আচ্ছা দোয়া বুধায় প্রোগ্রাম বুধো পিয়া আচ্ছা টপিক নি দোয়া ইয়েছো আল্লাহ ইয়ো তো গলত আ চলো ইয়ো বুধায় তো তা কেড়ো প্রোডাক্ট ইস্তেমাল কয়ো আপ
1: White
0: is a beauty cream हणो पया रिजल्ट मिलियो आ दुआ के
1: हां बिल्कुल
0: चलो चलो मानन के छा चवंदा चलो बियो तबियत ओके ओके थैंक यू सो मच चलो तुम चौधाई है ओके थैंक यू सो मच दुआ तुम प्रोग्राम में कॉल कई तवाजी तबियत जल्दी हाँ बिल्कुल तवाज कॉल अचन थी और कॉलिंग नंबर है 0332132322 एंड कयो अच्छा मैं जरा खो गई थी आगे कमेंट्स की जाने ओके सो ये कॉल अच्छा बाजू दे हेलो जी हेलो इतना भाई सन्नाटा क्यों ओके सो नेक्स्ट कॉलर देखते कौन है हेलो जी वालेकुम अस्सलाम
1: अहमद अंसारी
0: एम अंसारी अच्छा मतलब मुझे कन्न थोड़ो प्रोसेस कयो बुधी मां सही बुधांदी या न
1: मुझे सीर साईं आमिर खान जो जेको आहे न दुरुद लॻी वियो
0: माशाल्लाह माशाल्लाह इहा त ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे मूंखे ॿुधायो त तव्हांजी पहिरियों दफ़ो कॉल लॻी आहे तव्हां ख़ुशी में छा चवंदा
1: मां ख़ुशी में कुझु कोन चवंदुसि छो जो यकीन ई नथो अचे
0: यकीन इहा ॻाल्हि आहे मूंखे बि यकीन नथो अचे अच्छा टॉपिक ते त तव्हां जवाब ॾेई छॾियो आहे
1: जी जी
0: ऐं तव्हां प्रोडक्ट लॻाइण जे इरादे में आयो अञा ताईं
1: प्रोडक्ट यूज़ कयूं था
0: कहिड़ो हणो था
1: पिक्चर मोकिलियूं जा
0: हा पिक्चर किथे मोकिलींदो अच्छा इहो बि ठीकु आहे असां अॻिते हली सिस्टम कंदासीं त तव्हां पंहिंजा फोटोज बि असांखे मोकिले सघो था
1: असां बिल्कुलु कंदासीं अपलोड कंदासीं
0: चलो तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट लॻायो पिया ए मंसारी
1: इहो फ़िलहाल मां न ॿुधाईंदुमि मां रिज़ल्ट ॾिसां किथे
0: चलो चलो ज़बरदस्त आहे तव्हांजो फुल फॉर्म छा आहे ए मंसारी जो
1: अली मुर्तज़ा
0: अली मुर्तज़ा तव्हां नालो इलाही ख़ूबसूरत आहे माशाल्लाह ओके सो ॿियो छा चवंदा
1: ॿियो कुझु कोन चवंदुसि तव्हां मुंहिंजो जेको आहे न साउंड त लिखाई आहे बसि उहो प्ले कयो
0: कहिड़ो गानो ॿुधाए छॾियो हिते हलायूं था चलो ठीकु आहे ॿियो कंहिंखे सलाम ॾींदा या बसि टाटा गुड बाए
1: सलाम सलाम जेको आहे न सभिनी मुनाफ़िकनि खे
0: अली तव्हां बि दुआ वारी कॉल कई
1: आहे
0: चलो ठीकु आहे अली मुर्तज़ा बहुत शुक्रिया तव्हां कॉल कई माशाल्लाह ऐं तव्हांजी कॉल लॻी बि वई इहो इनखे लक चइबो अथव ओके सो नेक्स्ट कॉल वठूं था कॉलिंग नंबर आहे 0332132228 हैलो जी अस्सलाम वालेकुम अली ॾिस कॉलियूं डेली वठूं था त हाणे थोरो थोरो माण्हुनि खे सुञाणे वई आहियां सो मां सुञाणो त कंहिंजी कॉल आई पर भॼी वई चलो ठीकु आहे ओके सो हिते टाइम बि थी वियो आहे त असां शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जी तरफ़ हलूं था उनखां पोइ जल्दी वासी तव्हां ने मोटींदासीं तव्हां करे न वञो इते वेठा हुजो मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटावां थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग वाइटेश एंड जी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइटेश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हणो ऐं सोणा थियो

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: It's 2 PM. Jack is brought to you by
3: Hemme Diamond Glow Bleach Cream, जो डीप जैसी हेमे
4: तरीन जरिया है, प्री एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
5: फकीरी, नीम,
4: पुरियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए
5: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप, गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
4: फकीरी नीम प्रिकली हीट सॉप
5: जिल्द को गहराई से साफ।

0: करने, जरासीम से तहफ़ुज़ फराहम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप,
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
2: खूबसूरती है जो असल राज, डी स्किन ब्यूटी क्रीम, हिन विटामिन ई बीड्स, जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी चमकदार, सिर्फ बिंडी हन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म, दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जो शो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
0: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ, आवाज की डोर से बंधा हुआ,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: अभी बुधो प्या जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज
2: ओ पिता जा पिताई पिता ते वसे नूर मुझो तो
1: सिंध जो आवाज
0: गया। और डॉक्टर यानी कि जो भी चीज आप लोगों को बता दें तो आंखें बंद करके आप यकीन कर लेते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो बिल्कुल जब आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करेंगे तब आप लोगों की खूबसूरती जो है वो बढ़ती जाएगी। और खूबसूरती में जैसे कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आपके चेहरे पर जो है ना वो कोई भी निशानात हो या फिर इस तरह का सीन बन चुका है कि आपके लोगों की स्किन जो है वो काफी ज्यादा डल हो चुकी है, आपकी स्किन काफी जो है ना वो ऐसी रूखी सूखी सी लगती है, तो आप डी स्किन इस्तेमाल करके सिर्फ 2 दिनों में आप इस्तेमाल करके वाजे जो इसके नतज सकते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो है ना जदीद अज़ा शामिल है जैसे कि अल्फा आर्बुटीन है और जनाब उसके अलावा कॉजिक एसिड है, ग्लूटाथायोन है और उसके अलावा वाइटामिन बीड्स है और माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन है। इतनी सारी चीजें इसके अंदर एड की गई है तभी जाकर डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए बन गई है। तो बिल्कुल आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम को इस्तेमाल करके देखिएगा, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना आप लोगों ने, खास करके वो लोग जिनके चेहरे की स्किन काफी ज्यादा सेंसिटिव होती है। और ये बात है कि अगर लोग जो है ना ये ना समझ लें कि भाई ये अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम है तो सिर्फ सेंसिटिव लोगों के लिए, तो ऐसा भी नहीं है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम को आप सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंसिटिव लोगों को ज्यादा मैं हाईलाइट इसलिए करती हूं ताकि उनको भी पता हो कि भाई हमारे लिए भी फाइनली कोई प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल आप सारे लोग ही कर सकते हैं और उसके साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है और फेस वॉश भी आप लाजमी परचेज कीजिएगा। ऐसा ही कि आप फेस वॉश लगाकर देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता रहेगा। और फेस वॉश की अगर बात करें तो डी स्किन फेस वॉश जो है ये हाइलोरोनिक एसिड सीरम है जो आपकी स्किन के अंदर तक जाता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन को क्लीन करता है, आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो अगर आप इन क्वालिटी का फेस वॉश लगाना चाहते हैं तो डी स्किन फेस वॉश आपके लिए मौजूद है। और डी स्किन का फेस वॉश वाकई बहुत अच्छा है तो आप ट्राई करके देखिएगा। इसी के साथ हम प्रोग्राम के लास्ट लिंक में है और बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों को वेलकम करते हैं और साथ ही साथ मैंने जो आज आप लोगों से सवाल पूछ लिया था प्रोग्राम के अंदर तो वो भी जरा बताते हैं जिन लोगों ने अभी अभी हमें ज्वाइन किया है। तो आज के प्रोग्राम का मैंने आप लोगों से सवाल कुछ यूं पूछा था कि आप मुझे बताएं कि अगर मेमोरी लॉस हो जाता है, काफी लोगों की जो है ना वो याददाश्त चली जाती है, तो इंसान सब कुछ भूल जाता है, फिर उसे अपनी जबान कैसे याद रह जाती है। ये बात थोड़ी सी जो है ना वो सोचने वाली है जिसके ऊपर आज हम तबसरा कर रहे थे। और अगर आप हमारे साथ फेसबुक पर पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दिया करें, भाई आप लोगों की तरफ से मोहब्बतें होती हैं, तो पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए, दोस्तों को मेंशन करें ताकि उनको भी पता चले कि मार्केट में कितने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आ चुके हैं। ओके जी, अगर आप भी अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, आपको नहीं पता कि हम कहाँ से जाकर परचेज करेंगे, प्राइस वगैरह क्या है प्रोडक्ट की, या फिर कुछ भी अगर आपको ऐसा डाउट है जैसे आप समझते हैं कि अगर ये बात हमें सदरा से नहीं पता चल रही, तो आप वो पूछ सकते हैं जो नंबर आपको अभी बता रही हूँ उसके ऊपर आप रब्ता कीजिए, उनसे मजीद मालूम आप ले सकते हैं, अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल भी करा सकते हैं। तो कॉलिंग नंबर है जनाब 03, कॉलिंग नहीं बल्कि हेल्पलाइन नंबर 03-15-799-0595 बुढ़ी 315-79-595।

भी जी क्या बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना सुन रही हूँ। हिदायत अल्लाह कहते हैं तमाम जी प्रोग्राम में अचानक जी आदत जो असर वने या आदत वने बाबा बई चीजों खान याकत अली अवान हमारे साथी वालेकुम अस्सलाम बहुत शुक्रिया जी। जीशान राजपूत आ चुके हैं लो अदा किशोर भाई तुम समझी वेंदा कोन अगर एकड़ो डी नथी वठा तो बेडी वठनी पवंदी इट्स मजबूरी बाबा समान कहते हैं नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं मोहम्मद जमान भाई जान। ओके जी और बिलाल अली भी आ चुके हैं वालेकुम अस्सलाम बिलाल। और निदली कहती है नंबर मुसलसल बिजी है यानी कि आप भी ट्राई कर रही थी क्या बात है कोई नहीं कोई नहीं।

पता नहीं चला क्या इश्क है ये तो अली अकबर ब्रोही भाई नोट प्रिपेयर फॉर कॉलिंग लाइफ में इस शौक में शॉक्ड हूँ ऐसे ही होता है।

0: रिमोट अल्लाह बचाए. पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए और बताइए जरा कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, वाई जी इसकी लगा रहे हैं या फिर डी स्किन के लगा रहे हैं. और साथ साथ अनवर भाई कहते हैं कि चांद से तो नहीं अलबत्ता सूरज से पर्दा जरूर कीजिए, नहीं तो वो सच में आपके चेहरे का नूर चुरा लेगा. बिल्कुल जी, ये हकीकत बात करी अनवर भाई ने, तो जरूर पर्दा कीजिए. और उसके अलावा हैं जी हमारे साथ अनवर भाई, बहुत शुक्रिया आपका, इतने सारे कमेंट्स कर दिए हैं.
1: जिंदगी क्या थी कजीने की तरह जी न सके, हम के झूठे थे जो सांसों की जगह चलते रहे.

यानी कि हमने ये गाना सुना तो उस गाने से हमने ये सीखा कि यार की गली में मर जाना इश्क है, अगर आप यार की गली में नहीं मरते तो वो इश्क नहीं है। भाई क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा अली हसन हमारे साथ फ्रॉम कोयटा कहते हैं, दुआ आदाब सलाम खुश आमदीद, वेलकम शो इज नाइस और गुड आफ्टरनून। खुश आमदीद अली हसन आपको वेलकम करते हैं। और अनवर भाई कहते हैं जो प्रोग्राम है बुद्धि सगू। अच्छा तमावट थोड़ा नेटवर्क जो इशू हुआ, चलें कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, आपको हम वेलकम कर देते हैं। आतिफ असलम का गाना आ चुका है जी लिस्ट में और ये गाना हमारे प्रोग्राम का लास्ट ट्रैक भी होने वाला है। और चाचा खालिद आप हमारे साथ मौजूद कहते हैं, थैंक यू जी चाचा मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हैं, मजे में हैं और कहाँ बिजी थे। बिलाल कहते हैं कि पहले मेरा काम करने को दिल नहीं करता था, फिर मैंने मेहनती लोगों के साथ बैठना शुरू कर दिया, अब उनका भी काम करने को दिल नहीं करता। यस इसे कहते हैं चेंजिंग, तब्दीली। हर इंसान को अपनी जिंदगी में चेंजिंग लानी चाहिए।

अगर चाचा खालिद आपने टॉपिक के ऊपर जवाब दिया है इसे ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। कहते हैं मैंने AI यूज नहीं किया करना भी नहीं चाहिए। और दर्द दिल कहती है कि कहाँ से लाते हो ऐसा टॉपिक चंदा, दिमाग का दही बना दिया तो मैं, सच बताओ। और उसका सही है, थैंक यू। एमन सारी कहते हैं बेनजीर हिरा सनोबर भी चुपके से यू को सुन रही हैं। बेनजीर हिरा और सनोबर सबको वेलकम कहते हैं। ओ ये तो ये गुन्ना लिसनर है।

लेकिन आप सुडी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं, ये भी बता दिया करें। निधि कहती है यस मैं भी ट्राई कर रही थी, मैं नहीं कर सकती, क्या तुम कर सकती हो? बिल्कुल जी।

टू जे त वठिजो, नव जे त न वठिजो, समझो था। गुलाम रहीम बलोच भाई भी हमारे साथ हैं, खुश हीन के रियो है यामीन रबिया से आप हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अच्छा फहीम कहते हैं इनसे मेरी कॉल लगेगी, मुझे डर है आप मुझे कंफ्यूज ना कर दे। नहीं, मैं तो अगले इंसान को काम रखने की कोशिश करती हूँ। और नजीर लाया हमारे साथ मौजूद है जी, वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। सुन तो लेना पहले, सुन तो ले। हाँ जी, तो टाइम इतना जल्दी गुजर गया कि हम अब जाने लगे हैं। ओके, सो वरी इंशाल्लाह तमाम से मुलाकात मुझे थींदी पंजे बजे वाले प्रोग्राम में। ज्यादा कर जाऊंगी कि आप सब लोग अगर ट्राई करना चाहते हैं वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ट्राई करके देखें, अगर आप क्योंकि वाइट ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, तो आप ट्राई कीजिए। और जी नोरी भी हमारा शो सुन रही है, क्या बोली गई थी। ओके सो वही पंच बजे वाली प्रोग्राम में मिलूं थकती थी, मुझे तो माजरत कहूं था। जिंजा गाना रेजी बयान, मैसेजेस रेजी बयान, कुछ भी रेजी बयान, तो नाला माजरत कहूं था। सो मुकलानी ना ही बाबू सिंह, सलामत सा सलामत, अल्लाह हाफिज, बाय।

अमेरिका ईरान जाइबे ते हमला जारी। अमेरिकी फौज आ ईरान के मुख्तलिफ़ शहर ते फिजमनान में हवाई अड्डे के भी निशानो बनाया वो। आम मौजूद नदड़ी राबे खिते उर्दन बहरीन कोवैत में मौजूद अमेरिकी फिजाई अड्डन के निशानो बनाया है। उर्दन ने अठ ईरान करण की तस्दीक कर छी। पाकिस्तान एक भेरो बीहर अमेरिका ईरान में शुरू थियल छिकताण ते गणती जाहिर कर छी। धुरिन का सहप ए सब्र जो मुजाहरो करण जो मुतालबो मसलो गाल परदेही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी चयो आहे ते खिते की मौजूदा सूरत हाल ते नजर आहे। पाकिस्तान मसले जे हल लाइ गालिन ते यकीन रखे तो तकरार कंहिंजे बि मुफ़ाद में नाहे। पाकिस्तान अमुन कोशिशनि तां हथ नाहे खयो। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त नामे ते अमल जारी रहणु घुर्जे। अमेरिका ईरान में ज़मीन ते गौर शुरू करे छॾियो। अब्नार्मज़ भरिसां ईरानी बेटनि ते अमेरिकी फ़ौज मोकिलण जो इम्कान। अमेरिकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी रिपोर्ट मूजिबि आला सतही इजलास में सदर ट्रम्प खे सिफारती कोशिशनि सां गॾु ईरान में ज़मीनी फ़ौज मोकिलण बाबति ब्रीफिंग डि॒नी वई आहे। ब्रीफिंग में सदर ट्रम्प खे ईरानी बेटनि ते कब्ज़ो करण समेत शदीद

फौजी कार्रवाई बाबत बि ब्रीफिंग डि॒नी वई। फौज मोकिलण बाबति हतमी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार दौरे ते चीन रवानो। इसहाक डार शंघाई में चीनी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। खिते जी सूरतहाल ते फरियाद अली शाह पारां कणक ज़खीरो ऐं अटो महांगो कंदड़नि ख़िलाफ़ क्रेक डाउन जी हिदायत। सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि होरा खाते बाबति इजलास। सूबे मां 6 लख मेट्रिकूं हुजण जी तस्दीकदारनि 72 करण लाइ गिज़ाई खोट पूरी मुमकिन कदम खणंदासीं।

0: Krohn Neuer. Take a fresh start.
1: हमारे भाइयों के बारे में कमेंट किया गया जिसके हम भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं. आप किसी इदारे को इस तरह स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दें और खुद जब उनके शौदा के लिए ये बहुत बड़ी जाती है. ये नहीं, किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए. हम समझते हैं मौलाना साहब इस बयान को वापस लें. ये मेरी गुजारिश होगी, इल्तिजा होगी, क्योंकि उनकी भी सब बहुत बड़ा रेस्पेक्ट करते हैं. उनको चाहिए कि इस तरह के अल्फाजात ना इस्तेमाल करें, इस तरह के बयानात ना दें. उन बयानात को
2: सिंध के सीनियर बयान वापस वठण जो मुर्जी लिना मौलाना फरीदन बाबत दिनल पंहिंजो बयान वापस वठे. बयान वापस वठण सां मौलाना फजल रहमान की इज्जत घट न थींदी. मौलाना फजल रहमान मामले के अना जो मसलो न बणाए शहीदन ए गाज़िन बाबत बयान के सख्त लफ्जन में मज़म्मत करूं था. शहीद पाकिस्तान जो असासो ए असांजो फख्र आहिन. बयान बाज़न के रुतबे के को भी नुकसान नथो पहुचे. सभिनी खे कौमी ज़िम्मेवारीअ जो मुज़ाहिरो करणो पवंदो. हर कंहिंखे पंहिंजो बयान रखण जो हक़ आहे. क़ौमी मुफ़ाद मुतासिर न थियणु घुर्जे. MQM कन्वेनर वफ़ाक़ी वज़ीर डॉक्टर ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी चयो आहे त मुंहिंजे ख़्याल में मौलाना फज़लुर रहमान पंहिंजे बयान ते वज़ाहत पेश कंदो. क़ौमी बयान जो मुतासिर न थियणु घुर्जे.

0: सिंध में पाणीअ जे खोट ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज, मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। नंदो मेहारियुनि ऐं आबादगारनि प्रेस क्लब अॻियां भुख हड़ताल कई। ठिकराटो में महर माइनर जे आबादगारनि पाणीअ खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। अठहठ मोरीअ जे आबादगारनि जाम लगारी शाख में पाणीअ खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। रोहड़ी में काज़ीबाग जे पाणी खोट कयो वियो। पोछड़ ताईं पहुचाए फसल बचाइण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: मटियारी के हो तो आवाज भी मटियारी की है, सुनते रहो जीए एफएम 6।
3: यार कुछ डीन खा चेल जो सी तकलीफ अया साबी दर्द इतरो वधी वियो आहे जो हलन फिरन भी दुखियो लगे थो।
4: तो पोइटिक ऑइंटमेंट इस्तेमाल छो छा?
5: बिल्कुल मरम मुतासिर सानी सा जज़ब थी सूर आई सोडियम आ आराम पहुंचाने में मदद दे थी।
3: सिर्फ चेल ही सूर लाए
5: ना दा, आसाबन जो सूर, जोड़न जो सूर, कंध आई चेल जी तकलीफ, सट, धक लगन, पुराणन जख्म जे सूर आई चमड़ी जे जलन लाए भी फायदेमंद आहे।
3: इस्तेमाल किए कजे?
5: मुतासिर थियल हंध ते डीह में ब खा टे भेरा नरमी सा लगायो आई आराम जो एहसास हासिल करियो। जी हाँ, फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट, सूर खा आराम, हर रोज हर कदम। अड़ी वेजे स्टोर ता नालो वठी खरीद करियो फकीरी डेक्स ऑइंटमेंट।
6: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची बसी है बन के मोहब्बत का साज, GFM की आवाज,
1: GFM नेटवर्क।

0: सिंध की आवाज।
1: इट्स 3:15 PM।
2: दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय
3: व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

मोबाइल में 3661568 ये हमारा लाइव कॉल नंबर है। इस नंबर पर आप कॉल करके हमें बताएंगे और SMS के लिए मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में आपने लिखना है MP के एक स्पेस देना है, नाम और पैगाम लिखकर रवाना कर देना है 8881 पर। और जनाब मैं अपने आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करना चाहूंगी एक बहुत ही प्यारे कलाम के साथ। आइए मिलके मुस्तफीद होते हैं इस प्यारी सी खूबसूरत आवाज।

0: हक सच गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज उधरदा रहो उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: हक सच जवाब दीजिए है।
1: GAFM नेटवर्क की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, बदलता रहो।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: 10,000 मेट्रिक टन थियल कणक मार मेट्रिक टन कणावा खोरा खाते पारा कणक धरण वधीक कणक खरीद कई। वरी वजीर चयो त गिज़ाई खुराक लाइ हर मुमकिन कदम खणंदासीं।
2: सताब के दौरान हमारे इसके हम भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। आप किसी इदारे को इस तरह दे दो और खुशी जब उनके सौदा के लिए ये बहुत बड़ी जाती है। ये किसी भी सूरत नहीं होना चाहिए। हम समझते हैं मौलाना साहब इस बयान को वापस, ये मेरी गुजारिश होगी, इल्तजा होगी, क्योंकि उनकी भी सब बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं। उनको चाहिए कि इस तरह के अल्फाजात ना इस्तेमाल करें, इस तरह के बयानात ना दें, तो वो वापस लें।
1: सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण मौलाना फजल रहमान खान शहीद बाबत बयान वापस वठण जो मुतालबो करे छो। शर्जील इनाम मेमण चयो त मौलाना फजल रहमान शहीद बाबत दिनल पैंजो बयान वापस वठे। बयान वापस वठण से मौलाना फजल रहमान की इज्जत घट न थी। मौलाना फजल रहमान मामले के अना जो मसलो न बणाए शहीद गाजिन बाबत बयान की सख्त लफ्ज में मजम्मत करूं था। शहीद पाकिस्तान जो असासो असो फख्र आन बयानबाजी से शहीद के रुतबे के को भी नुकसान न तो पहुंचे।

सभिनी खे क़ौमी ज़िमेवारीअ जो मुज़ाहिरो करणो पवंदो। हर कंहिंखे पंहिंजो बयान रखण जो हक़ आहे। क़ौमी मुफ़ाद मुतासिर न थियण घुर्जे। MQM कन्वेनर वफ़ाक़ी वज़ीर डॉ. ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी चयो आहे त मुंहिंजे ख़्याल में मौलाना फज़ल रहमान पंहिंजे बयान ते वज़ाहत पेश कंदो। क़ौमी बयान जो मुतासिर न थियण घुर्जे। सिंध में पाणीअ जे खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि सरापा एहतजाज बणियल। मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा। नंदू में हारे नए आबादगारनि प्रेस क्लब अॻियां भुख हड़ताल कई। ठिकराटो में महर मानेर जे आबादगारनि पाणीअ खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। अठ अठ मोरीअ जे आबादगारनि जाम लगारी शाख में पाणीअ खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो। रोड़ी में काज़ीवा जे आबादगारनि खोट ख़िलाफ़ पोछण ताईं ज़रई पाणी पहुचाइण जो मुतालबो।

चोहर जमाली वेझो ॿिन धुरिन में मामूली ॻाल्हि तां झेड़ो हिकु ॼणो कतल मोमरिन में झेड़ो थियो जवाब कुंवणी धुरिन में चिकना।

जे डिवाइजन जो लाश रखी धरणो, पुलिस ते अब्दुल्ला के तशद्दुद करे मारण जो इल्ज़ाम, जिम्मेवार अहलकारनि खिलाफ कार्रवाई जो मुतालबो। पुलिस चयो आहे त अब्दुल्ला दिल बीहण सबब फौत थियो आहे।

मदे जी वासण माज़ूर नारीअ जो गुर्दो विकरो करण वारे केस में नओं इंकशाफ़। माज़ूर नारीअ जे अगवा इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार जवाबदार पारां नारीअ जे फोत थियण जो एतिराफ़। सईद सूमरो जो चवण आहे त ख़ालिदा मीराणीअ खे गुर्दो कढाइण लाइ गंभट इस्पताल वठी विया हुआसीं। हनीफ़ भुट्टो ऐं नारी जूं टेस्टूं बि थियूं। नारी बिल्कुल आहे वींदे ख़ालिदा हांव फाटण सबब फोत थी। नारी जे फोत थियण बाद गुर्दो वठंदड़ हनीफ़ भुट्टो ऐं संदसि घरवारी फरार थी विया। आऊं नजमा ऐं शकील मंगी फोती औरत जो लाश मदे जी जे शहीद अली हैदर शाह कब्रिस्तान में दफ़नायो। पुलिस जो चवण आहे त जवाबदार जे एतिराफ़ बाद ख़ालिदा घर जी ॻोल्हा करे रहिया आहियूं। टंडोलियार में ख़िताबी जे ज़्यादतियुनि बाद मुबैना क़तल केस में मौलविन समेत पंज गिरफ़्तार करे वरितो। न थियो हतमी पोस्टमार्टम रिपोर्ट।

0: आई गुजरियल रात अस्पताल में दम धड़ी हवाले कयो। डॉक्टर साणस जादती जी तस्दीक कई हुई। हिते बेड़ियुनि में सवार समूरा मुसाफिर फोथी लबनिया वेझो मुसाफिर बेड़ी हादसे जो शिकार। बेड़ीअ में सवार मुसाफिर फोथी विया आहिनि। इख़्तियारनि मूजिबि बेड़ीअ में सवार हुआ।
1: GAFM News
2: जो आवाज़ गीत संगीत जो आवाज़ GA हैदराबाद मटियारी FM 91 सिंध जो आवाज़।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: तहजीब व सकाफत से सजी सिंध की मेहमान नवाज धरती,
2: जिसकी फजाओं में रची पसीन के मोहब्बत का सास, GFM की आवाज।
1: GFM नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: Check is brought beauty cream glowing skin jo raaz, a product by Biocon International Pakistan.

0: देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
2: yeah!

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: ड्रोन मिसाइल हमला, ईरानी फौज अर्धन मोहित में मौजूद है। उर्धन अठ ईरानी मिसाइल फिजा में तबाह करण की तस्दीक करे छी। पाकिस्तान एक भेरो बीहर अमेरिका ईरान में शुरू थियल चिकताण ते गणती जाहिर करे छी। धुरिन खां सहप ए सबुर जो मुजाहरो करण जो मुतालबो। मसलो गालिन जरिए हल करण ते जोर। परदेही तर्जमान ताहिर हुसैन अंदराबी चयो आहे ते खिते जी मौजूदा सूरतहाल ते नजर आहे। पाकिस्तान मसले जे हल लाइ गालिन ते यकीन रखे तो। तकरार कंहिं बि मुआज में नाहे। पाकिस्तान अमुन कोशिशन तां हथ नाहे खयो। इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त नामे ते अमल जारी रहण घुर्जे। अमेरिका ईरान में जमीनी फौज मोकलण ते गौर शुरू करे छड्यो। अबन अरमुज भरसा ईरानी बेटन ते अमेरिकी फौज मोकलण जो अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी रिपोर्ट मूजिब आला सतही इजलास में सदर ट्रंप के सिफारती कोशिशन सां गॾु ईरान में जमीनी फौज मोकलण बाबत ब्रीफिंग में सदर ट्रंप के ईरानी बेटन ते कब्जो करण समेत शदीद जमीनी बाबत ट्रंप कंदो। नायब वज़ीर आज़म एसाक डार एक डींहं जे दौरे ते चीन रवानो। एसाक डार शंघाई में चीनी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। खिते जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल थींदी। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां कणक ज़खीरो ऐं अटो महांगो कंदड़नि ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जी हिदायत। सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि खुराक खाते बाबति इजलास। सूबे मां 6,10,000 मैट्रिक टन कणक गुम थियण जी तस्दीक। अमलदारनि पारां गुम थियल कणक मां 1,72,000 मैट्रिक टन कणक हथ करण जी दावा। खोराक खाते पारां कणक जी खोट पूरी करण लाइ पास्को खां वधीक कणक

0: सभी के कौमी जिम्मेवारी जो मुजाहरो करणो पवंद हर कंखे पैंजो बयान रखण जो हक है कौमी मुफाद मुतासिर न थियण घुर्जे एमक्यूएम कन्वेनर वफाकी वजीर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी चयो आहे त मुंहिंजे ख्याल में मौलाना फजल रहमान पंहिंजे बयान ते वज़ाहत पेश कंदो कौमी बयान जो मुतासिर न थियण घुर्जे। सिंध में पाणीअ जे खोट ख़िलाफ़ आबादगारनि सरापायत जाज बणियल मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा ऐं धरणा नंदू में हारे नए आबादगारनि प्रेस क्लब अॻियां भुख हड़ताल कई ठिकराटो में महर मानेर जे आबादगारनि पाणीअ खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो अठहठि मोरीअ जे आबादगारनि जाम लगारी शाख में पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो रोड़ी में काज़ीवा जे आबादगारनि पारां बि पाणी खोट ख़िलाफ़ एहतजाज कयो वियो पोछण ताईं ज़रई पाणी पहुचाए फसल बचाइण जो मुतालबो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज बुधंदा रहो।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां। हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप जल्दी इन्फेक्शन से बचाव का बेहतरीन जरिया है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: जल्दी एलर्जी और खारिश के लिए मुफीद है।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: झुर्रियों, छाइयों, कील महासों और गर्मी दानों से हिफाजत के लिए।
2: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप गर्मियों में दे ठंडक का बेहतरीन एहसास, हर रोज कुदरती निखार।
1: फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
2: जिल्द को गहराई से साफ करने, जरासीम से तहफ़ फराम करने और गर्मी की वजह से होने वाली घुमरियों, खारिश और बदबू को कम करने में मदद देता है। फकीरी नीम प्रिकली हीट सोप
1: हर अच्छे स्टोर से नाम लेकर तलब कीजिए।
3: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: नया लाइफबॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू पहली बार एगेन योगर्ट के साथ अब बालों से 100% खुश्की जाए आगे बढ़ने का कॉन्फिडेंस आए लाइफबॉय एंटी डैंड्रफ शैम्पू विथ योगर्ट एंड एग 100% आगे बढ़ो बिना रुके
1: हक सच जो आवाज गीत संगीत जो आवाज जे हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6 सिंध जो आवाज उधरदा रहो
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम हर पल फन जी एफ एम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी
3: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: DA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

जान होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: मौजूदा अमेरिकी एडन टेब्रोन मिसाइल हमला, ईरानी फौज अर्दन बहरीनी कुवैत में मौजूद अमेरिकी फिजाई एडन के निशानों बनायो, उर्दन अठ ईरानी मिसाइल फिजा में तबाह करे छी। पाकिस्तान एक भेरो बीहर अमेरिका ईरान में शुरू थे चिकटाण ते गणती जाहिर करे छी, धुरिन का सहप ए सबुर जो मुजाहरो करण जो मुतालबो, मसलो गालिन जरिए हल करण ते जोर। परदेही तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी चयो आहे ते खिते जी मौजूदा सूरतहाल ते नजर आहे, पाकिस्तान मसले जे हल लाइ गालिन ते यकीन रखे तो, तकरार कंहिं बि मुआज में नाहे, पाकिस्तान अमुन कोशिशन तां हथ नाहे खयो, इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त नामे ते अमल जारी रहण घुर्जे। अमेरिका ईरान में जमीनी फौज मोकलण ते गौर शुरू करे छड्यो, अबने हरमुज़ भरसा ईरानी बेटन ते अमेरिकी फौज मोकलण जो इम्कान, अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी रिपोर्ट मूजिब। आला सतही इजलास में सदर ट्रम्प के सिफारती कोशिशन सां गॾु ईरान में जमीनी फौज मोकलण बाबति ब्रीफिंग डिनी वई आहे। ब्रीफिंग में सदर ट्रम्प के ईरानी बेटन ते कब्जो करण समेत शदीद फौजी कार्रवाईन बाबति भी ब्रीफिंग डिनी वई आहे। जमीनी फौज मोकलण बाबति हतमी फैसलो सदर ट्रम्प कंदो।

0: चार हिक डींहं जे दौरे ते चीन रवानो। एसाकदार शंघाई में चीनी क़यादत सां मुलाक़ातूं कंदो। किथे जी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल थींदी। वॾे वज़ीर सैद मुराद अली शाह पारां कणक ज़खीरो ऐं अटो महांगो कंदड़नि ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जी हिदायत। सैद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि खुराक खाते बाबति इजलास। सूबे मां 6,10,000 मैट्रिक टन कणक गुम थियण जी तसदीक। अमलदारनि पारां गुम थियल कणक मां 1,72,000 मैट्रिक टन कणक हथ करण जी दावा। खुराक खाते पारां कणक जी खोट पूरी करण लाइ पास्को खां वधीक कणक ख़रीद करण जी तजवीज़। वरे वज़ीर चयो त ग़िज़ाई खोट पूरी करण लाइ हर मुमकिन क़दम खणंदासीं।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, GA हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: देखिए रासे उल्फत 7 अप्रैल से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

देखिए रंग महल रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: रक्से बिस्मिल जल्द आ रहा है।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी F.6 सिंध जो आवाज, उदंदा रहो उदंदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जीएफएम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: ये

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए पागल खाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डीह जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी एफएम 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, जीएफएम बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: DA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: yeah!

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GAFM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

रात होती है, मगर ये जान लेने में हमें एक उम्र लगती है। कभी जब जान जाते हैं तो फिर ये जान जाती है। ये दुनिया जीत जाती है, मोहब्बत हार जाती है।

0: देखिए ड्रामा सीरियल मोहब्बत और महंगाई रोजाना रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: देखिए रासे उल्फत 7 अप्रैल से मंगल की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उतरदा रहो उतरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

देखिए रंग महल रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: रक्से बिस्मिल जल्द आ रहा है।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो बदलता रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: देखिए पागलखाना पीर से जुमेरात रात 9 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल शिकार 4 नवंबर से हफ्ता और इतवार रात 7 बजे
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
3: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
4: yeah!

0: देखिए सियानी रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जिए हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन जी एफ एम, बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: देखिए नया ड्रामा सीरियल स्टैंड अप गर्ल 21 दिसंबर से जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।
1: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
2: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए तेरे बिन 28 दिसंबर से बुध और जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: वज़ीर-ए-आज़म खत्ते में जारी चिकटान सबब कैंप इम्कानी चैलेंज के मुंह डेण लाइ तैयारी की हिदायत कर सदी। पेट्रोलियम में शयूं जखीरो करण खिलाफ भी कार्रवाई की हिदायत। शहबासी की सदारत हेठ इजलास में पेट्रोलियम शयन तवानाई बचत की कौमी मुहिम में अवाम ज सरकार की साराह। वज़ीर-ए-आज़म चाहे तो गुजर सादगी किफ़ायतशारी मुहिम में अवाम भरपूर किरदार अदा किया। हुकूमती सब्सिडी से तेल अघन में वाद के असर के मौसर अंदाज में कंट्रोल कर वो। आम मानुन मोटर साइकिल सवारन रिक्शा ड्राइवर ट्रांसपोर्टर के भी तहफुज दिनों वो। पेट्रोलियम शयन के एतराजू कोट पैदा करण खिलाफ कार्रवाई कई वे। जरूरत पवण से वक्तायती हिकमत अमली जोड़ी वे।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरना रहो उधरना रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: मैक्रीनो।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बदलता रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: GA FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, ॿुधंदा रहो।

0: देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो, उधरदा रहो। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधरदा रहो।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।
3: Yeah!

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
2: खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले, मैं नींद नींद को तरसा मगर नहीं सोया। खिलाफ मौसम दिल है कि थम गई बारिश, खिलाफ हुरमत गम है कि मैं नहीं रोया।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर ना रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

0: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधरदा रहो उधरदा रहो।
1: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

अमेरिका ईरान में जमीनी फौज मोकलणते होड़ शुरू कर छो अपने भरसा ईरानी बेटन से अमरीकी फौजी मोकलण जो इम्कान अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट मूजिब आला सतह इजलास में सदर ट्रंप के सिफारती कोशिशन से गड ईरान में जमीनी फौज मोकलण बाबत ब्रीफिंग दिनी वही है। ब्रीफिंग में सदर ट्रंप के ईरानी बेटन से कब्जो करण समेत शदीद फौजी कार्रवाई बाबत भी ब्रीफिंग दिनी वही है। जमीनी फौज मोकलण बाबत हतमी फैसलो सदर ट्रंप कंदो।

सिंधा कुंवर चक्कर से इलाइक़े संगरार मां 5 साल अगवा कयल नेगरी प्रिया कुमारी जी बाज़ियाबी लाइ नई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जोड़े छी। डीआईजी सखर जी सरबाई में जेआईटी जांच करे एक महीने अंदर रिपोर्ट जमा कराने जे पाबंद हुंदी। जेआईटी में एसएसपी सखर, एसएसपी शिकारपुर, एसएसपी लाड़कणो ए डीएसपी सखर शामिल, आईएसआई, एमआईआईपी ए रेंजर साहब मेजर रैंक जा ऑफिसर भी मेंबर तौर शामिल। खाते जेआईटी जारी कर

0: हुजे असां माहिर उहे छा आहियूं
1: हुकूमत ते जेकी जून ते को बि इतमाद असांखे बि थिए तव्हांजो पतो पर असांजो असीं पंहिंजे मुल्क न रखंदासीं जेसि ताईं असांजा बच्चा बाज़ार न थींदा एन एम ए जेका साहिबु नथी चवे।

0: वहाँ चले थी तो डायलॉग थी या डायलॉग में कोई हल आए डायलॉग करना होता हिंसर तो एक चीज होना पाया असा बिल्कुल जखर भाई जी आई जुड़ी आने में बिल्कुल साजिश है अस बिल्कुल सहमत ना
1: जितना इंसाफ है असाने घर में मातम लगो पे शाम जो शाम में गरीबा में वेठा छो भला बच्चा असा तुम्हें कुछ भी ना करो तुम वो कुकड़ जो भजा था वो अगर कुकड़ काटे वो कुकड़ काटे वो असान जी आई टी वगैरह तस्लीम
2: ना जे आई टी है या बे पुराने जे आई टी वागुर नजर में सवाए एक टॉयलेट पेपर के उनकी का अहमियत कान्ह इतने उ मू वेठा जिनका तीन बिन तीन चंद साल बार अगवान कोई एफ आई आर ना कटी
3: बबलो वट धरणो हणी वेठल प्रिया एक्शन कमेटी के अगवाण की कामयाबी लाइ जोड़ियल नई जेआईटी के रद्द कर छो सुणे हर सूरत में बबलो कौमी शाहरा बंद कर ऐलान अगवाण अग भी अड़ी जेआईटीज जुड़ी चुकी हैं पर प्रिया की कामयाबी ना थी रोज रोज जेआईटीज जोड़ बदरा मासूम प्रिया के बाजाब करा वने।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूँ।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।
2: सुबह की चाय या ट्रैफिक का जाम, हर पल फन, GFM बदलती लाइफ की ट्रेजेडी।

0: क्योंकि मैं ग्रीन हूं।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।
2: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
3: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
2: जीए FM नेटवर्क,
3: सिंध की आवाज।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, ये हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, उधर दा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: जीए एफएम नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।

0: देखिए यारे मन जुम्मा से इतवार रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।
1: हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जीए हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुदंदा रहो।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो, उधंदा रहो। हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6, सिंध जो आवाज, उधंदा रहो।

0: जिस धरती से जुड़ा है कलंदर लाल शहबाज,
1: उसी खित्ते की बनी है आवाज।
0: GA FM नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज़।

हक सच जो आवाज, गीत संगीत जो आवाज, जे हैदराबाद मटियारी FM 91.6 सिंध जो आवाज, बुधंदा रहो।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इसराइलियन सरन ईरान से वायदे से राबता हण लाय अमरीका में मुहिम हलाई उनते वड़ी रकम खर्च कई। अड़ी मुहिम बावजूद अमरीकी मफादन के पहरी तरजीह डिनी वेंदी। ईरान से तकरार जो मुस्तकिल हल फौजी कार्रवाई ना है। यह भी एक वाज़ह हकीकत है। इसराइल अमरीका में अवामी राय की जंग भी हारा रो है।

ईरान मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर ऐं बिजली घरनि ते अमरीकी हमलनि जी सूरत में खिते जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करण जी धमकी ॾेई छॾी। बाबुल मंडप बंदि करण जी बि तयारी। ईरानी फ़ौज जे ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर जे तर्जमान इब्राहिम ज़ुल्फ़िकारी चयो आहे त अपना हुर्मुस ईरान जी रेड लाइन आहे। अमरीका खे मुदाख़लत करण न ॾींदासीं। ट्रंप जी धमकियुनि ते अमल कयो वियो ऐं ईरान जी बुनियादी निशानो पस्त। ईरानी फ़ौज जे तर्जमान मोहम्मद अक्रमीनिया चयो त जंग ताईं पखड़जी वेंदी। ईरान मूजिब ईरान बाबुल मले सां

0: आपने हरमुस परसा ईरानी वेटन अमरीकी जनरल की रिपोर्ट मुजिब आला सतह इजलास में सदर ट्रंप की कोशिश से गड ईरान में जमीनी फौज मोकलन बाबत ब्रीफिंग दिनी वही है। ब्रीफिंग में सदर ट्रंप के ईरानी वेटन से कब्जो करण समेत शदीद फौजी कार्रवाई बाबत भी ब्रीफिंग दिनी वही है। जमीनी फौज मोकलन बाबत हतमी फैसलो सदर ट्रंप कंदो।
1: हक सच जो आवाज़ की मटियारी जो आवाज़ बुधंदा रहो।